हो हिरान ब जमुनागी हिरान ब हो हिरान ब पुंसी नुमित ताकिदोरे ताइबंग इपाक लानबियु हिरान मन सुयावरक्ते तरेत सेंजासु लेजदे हिरान बनाउन्द पीनबा थवाय असे लोबीरो पीना हिब हे हिहोन बा।

हाउजिक आकाशवाणी इम्फाल की संगाई सिने दसी की थमजरी थोरम सिंह सामलने निकरी गसे युपुंग तरुक मिनट तरा थमजरी सिद हिदाग अयुपुंग तरुक मिनट तरा मंगा लेबाक इंब इसंग मथंग मथंग ताहनजगनी लोनना पुंग तरुक मिनट कुन मंगा मतम इसंग थमजरी तांकक नाइन संदोक्षरीब रेडियो क्लास थमजरी अयुपुंग तरुक मिनट निफू ngasi ki tangkak ta class 7 gi social science history lesson number 10 sani mari futara ma thoi shuba tangkak thormasi department of education as samagra shiksha manipur gi tengbang loinana sandoksha ba thorom ni loinana matami sai tanjagani

भी थकपना हरा फई मारा फुलगा महीगा सिनीगा संगोंगा संगोम अफंबगा पुन्न सारबदी अंगांगी मखों हांब फई पांबी मकु मही संगोम जीरा अमुनब असी साबना ब्रिस मंगब फई साबदी पांबी गी मकु ग्राम तरा जीरा ग्राम कुन संगोम लिटर मखाई फुलगा लिटर मसुंग अमतं गायब फावा ngौरगा अमुक थकपदा सासमस तरा थकप नोमदा अनिरक थकपना नुमित तरा निरोम थकलबदि ब्रिटसा यामना सतप लेना फहली पांबी मयोल सुगायरगा हप्ता अमा थोइदिंग थाउद तिंगलगा इरुजबगी ममांगद खुयाद तैरबदी खुया साब फै हैखागोग अमुनबगी मतोंग नुमित खुदिंगी सारबदी नुक्सित काब अमांगब लिखब सखाव सोकब असिनब काब असिनसिंब फहले हाइजिंग दिफारब हैखागो असंगब मैद मुन्न लौरग सितामिसि खर तोलग सारबदि असिनब काब फहले मसिदसु नत्तन पुक्नाब इतोन फाइब असिनसिंब पुक्कि अनाबदसु फहले हैखागो मना सुबगी मही समस अमा नोमद अहुमलक थकलबदी इसिंग का हेन सतप पुक चतपगी लेना फै थकपदी नुमित तरानी रोम थकनी

0: ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯐꯝꯕ ꯇꯟꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯌꯦꯡꯕꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯌ
1: ishasin si siapa tu pasal mati yang pangi kok
0: yang pasal nampangi ai sida nong magi Delhi maruk hun ba yawe ba Delhi collection di pude ba maruk oi na khom ba nong magi sanga sanga hun ba la hun ta ba mai no le adu mitan tan do pa su yawe adu water ga ina pisale extra ga na iche agent do dagi maruk ki kanul dei lo tho sin mai na lak nei du bengi nong gi di ai am ta thoi do pa lo de
1: adu di bu ji ki matam da mai am sina ka thien pham ba da yam kana kana dai je pot phasa na niom sum na yam na yo laga di adu ma dum imung manung gi sa su siem da dum sa ona matim pangi ปังยำปังเอ็งงุนดิยำปะซะนะซะปะตุบยำนุงไอโกยตาปะตาปะเดฮวยไฮดิตองซะดิปะคะเซดุไมปะเอนะลอดุยเนบะยำนุงไอเซฮวยวาพัมซะตาปะดะตุมะตุงตาปะซะเฮนะไมปังนะควยปอดชิพะนะสิปิโกดุกะอิซายชูเซมระเฮนะทองนาพะนะไมยงกะบิโยนะไฮเซริโกโอยจะเกยำนุงไอเซงะซิเฮนยะฮะซะคะเกโกโอยานยันกันซิโกกีไฮซิกังอิมาไคเทลซิดะลากะไคเทลมะปาวไฮบะดิอิมาซินซินะมะควยมะควยยะอวานุงไอตัมบิเดเอโก
2: इससे आपका घर सूर्य
1: बिजली
2: बिल जीरो और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेच कर पैसे भी कमा सकते हैं तो बैठे क्यों हो अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर
3: हर घर सूर्य घर नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम
4: तबीले केतेलगी मपाउ नसी केतेलगी मपाउ थरुमदा हाइजिंगांग इमा केतेलगी मपाउ थरुम लाथोपी की बसिंग गांगोम इबे आइमा मदी आयक पम प्रियोबला थरुम पुथोपा थोकचोम रेनुबला
3: 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज प्रदेश के रायसेन जिले से
4: नाहरोलगी
3: खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता अब समाचार
5: Naharol ge khonjal ge thauram tabiram liba singbu thokchom pusparanina taram nok jari kurum jari gese ge thauram da tham jari special program gese ge special program da tham jari tha sigi diary

अकल मथिलगी थरुम के संदुक्तुन तहजरीबा से मेघ साम हम दशमी मंगा संदुक सेरीबा आकाशवाणी फलगी एफ एम संगाई चैनल दगनी हौजिंग पुम्पम से पुदन लागसरी तोान तोान बैसेकप सिंगी खोजल दगी गीत मथंग मथंग होना खुदन की हमने लुबीरसी सानदगी गीत अमा

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: Those who build the nation with their hard work

0: Sasa, na koi mam namak yorak ledana.
1: Yosakli Gurudev, pranam Gurudev.
0: Ayusman Baba, mangolo yu Sasa. Adidi, ngasidi, miyoi bana satna gadaba, kangdaba yadraba, tangai padraba satna kanglon, niti niyong, amadi, dan niti matangda, kara duk ipahaydi. Na koi, munna tau koi Sasa.
1: Tapiu Gurudev.
0: पिता माता ईश्वर वध्याते ईश्वर पिंग प्रीति भवती हाय बदी इमा इपा मिन उब ईश्वर ने खल बदी ईश्वर ने सुथाव जाल पीबी मरम मजनी सासा मतम ले के बिकता इमा इपान हाय इंगे दबनी मखोई नी जानिंग दब पामजे दब थबक थोरम अमत तसु तो बयादे कोई सासा
1: खंजे गंगुरुले
0: अनुगंत सत्त पुरुषम अफवनी मत उतमो नखो यमरक्ता करागुम अखंग यार बदे हायो मधुदी अफवनियो यमना सीएन का तो बगुन खर दंग दो अदु हायो ऐ ताके
2: ननाई ऐ हाय जगे गुरुदेव
0: हायो हायो हाय
2: गुरुदेव नलुपा हल्लमन मसा खंगबा थक्सी खक्सी खंग न चटपा साउदबा पेंथोक पंगंबा अतो पमीगी थवाई नुआई तनव थवक तो दबा सजत लिचत फजबा दर्मनी ती गाय दबा असीन चिंग बखरा असीन ओय गनी गुरुदेव
0: साधु साधु इपा पेले इशाय वाफम मजु ताबदा इपा पुंग पेन पेले आ अदुदी मशी मशु अमुक पुंग चंग न तारो पहाय दी को साशा अहल्लमन बुमसक खंग बदी पुंग वाकल द शांति फंगे असुमना पुंग नम दी वाकल व जोई तोबा खुदुम संब नम लबदी संसार सिदा अफव मिसक अमगे मगुन में योम लबने मसे ईश्वर बता जबा अमदी इमाल पावु नुसी न लून सान तो जबा अदुग ममसा सिंह अदुत्तन फंगे गदवनी दो मसे मतम सुपदना कोई खक कावगनु कोई जासा
1: थगनी गुरुदेव
0: याम नुआ रे असी दे याम नुआ रे अदु गेमो आइ खोई गे लई रिबा

0: कृष्णा, न कौन तमाल अन्न अन्न कुलम जल तोल में ननाय वो ननाय ननाय वो हिंदी वो है हरी जगत के मपु
1: नंग निंग जरी बदुम थुंग ब ओई जरा हायु हे अत होई ब मुनि देव नंगी करिया पाम
0: प्रभु हे प्रभु भंगी ओम मेले तेम कुत्तवाम सिपाई ब सरोन थम्माल नोपूर मेले तेम नक्षंदा बजेंती मला थोली ब मनो नपमा छोना जगत पुंब समर्प इमानंगी त्रिभंग मूर्ति यदो ननाय रोलवा अंतकाली मतंग ननाय वो मुक्त दी दरसन पनंद्रियु ए हरी मसितने ननाय न पाम जवा जगत की मपू
1: नंग न निंजव थुंजरो

शुक्रिया निर्मला। नमस्कार दोस्तों, ये है आकाशवाणी इम्फाल केंद्र का FM संगाई चैनल 103.5 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त थोकचुम गीता। स्वागत करते हैं आज के गीतमाला कार्यक्रम में।

दोस्तों आज सोमवार है और हम आपको सुनवाते हैं गाने नए पुराने। तो कार्यक्रम के पहले पायदान पर सुनते हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत है जतिन ललित का।

दोस्तों आप सुनते हैं मशहूर हिंदी क्लासिक कॉमेडी फिल्म पड़ोसन का एक बहुत ही लोकप्रिय और सदाबहार गीत। ये गाना फिल्माया गया है अभिनेत्री सायरा बानू पर, जो इस गीत में है, और आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। गीतकार है राजेंद्र किशन और संगीतकार है राहुल देव बर्मन।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल केंद्र के संगाई चैनल से गाने नए पुराने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह और श्रिया घोषाल के मधुर आवाज से सजा ये गीत फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से। गीतकार है इरशाद कामिल और संगीतकार है विशाल शेखर।

दोस्तों, अभी आपने सुना सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर के युगल स्वर में फिल्म धनवान से ये गीत। इस गीत के बोल लिखे थे साहिर लुधियानवी ने और संगीत से सवारा था हृदयनाथ मंगेशकर ने। अब सुनते हैं अगला गीत। ये सिलसिला है प्यार का, फिल्म से ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वर में। बोल समीर के हैं और संगीत जतिन ललित का।

दोस्तों अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में आप आए बाहर आए फिल्म से ये गीत बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अब सुनते हैं इश्क फिल्म से ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वर में गीतकार है राहत इंदौरी और संगीतकार है अनु मलिक

अपना तेरे लिए। दोस्तों इसी गीत के साथ गाने नए पुराने अब यहीं समाप्त होता है। दोपहर 2:30 बजे फिर आपसे कंगना चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने रेडियो दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आकाशवाणी इम्फाल हौजिंग नुथिल की पुंग अहुम तारे मणिपुरी दा पाव ताबिरसे।
1: आकाशवाणी इम्फाल मराठी भाई बिना पाव पाजरी मणिपुर से वर्ल्ड नो टोबेको डे लिंग कुंतरुक पांथोली राज्य की डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस स्टेट हेल्थ सोसाइटी एंड आईसीएम मणिपुर आईएमए मणिपुर स्टेट ब्रांच का खुशमना लंपेल पाट आईएमए हॉल पांथोकी निमित पालन की थीम अनमास्किंग द अपील काउंटरिंग निकोटिन एंड टोबेको एडिक्शन है थौरम हेल्थ सोसाइटीज की डायरेक्टर डॉक्टर एन हेमंत कुमार सिंह स्टेट मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन मणिपुर डॉक्टर एम दिनेश सिंह फैमिली वेलफेयर सर्विसेस की डायरेक्टर डॉक्टर एन विनोद सिंह आईएमए मणिपुर स्टेट ब्रांच की प्रेसिडेंट डॉक्टर सिमसन सारियो सेक्रेटरी डॉक्टर ए के इबोल सिंह थौरम हिदाक मना तोनबगी नागालैंड सरकार ने राज्य टोबेको वेंडर लाइसेंसिंग रूल्स हौदोक्तुना राज्य सिन थोंबदा चनहंदुना हिदाक मना थिंगनबगी खोंजंग हेना कनखतहंगदौरी ngasi kohima da raise thage world no tobacco de ning ani de ning ani kuntar pangthok pagi thorum da raise gi hakchel amasung yai phayumbal gi secretary s tainyu na hai hokiba senba sahida mai tampham sing gi akoi phada leiba tobacco free zone da athingba asi thugai ba miyoi samri romna fine tokhi road to ufc season 5 gi semi finalist amasung प्रोफेशनल एमएमए चुंगरेंग कोईरेंग लेमजनी रोड टू यूएफसी टूर्नामेंट की सेमी फाइनल चलपद मुख्यमंत्री युमनांग खेम जाने नुगाइब फोंदोक्रे मुख्यमंत्री का इंडियन राइनो है खाब एमएमए फाइटर असिगा मुख्यमंत्री की सेक्रेटरी उनकी सोशल मीडिया थागत वारोल मुख्यमंत्री ने है की माई पाप असि मणिपुर चाथोचनी सन्जेनबम एफ सिना तरा तरुक सुब वाई आई जी पी ट्रॉफी लिंग अनीतरुक कौथौजम की चैंपियन होख्रे यंग इलिटरेट गाइडेंस प्रोग्राम क्लब कौथौजम लेकिन ट्रॉफी सानकी फाइनल मैच खा सन्जेनबम एफ सिना याचल एफ सि नंबोल नौरेंबू पांजल अहम अनी माइथिब पीदना चैंपियन होखे टूर्नामेंट पुनः टीम कुंथा निथो सरुक याखी लोशनबी थोरम डॉक्टर विमोल अकोजम एम पी वाई आई जी पी की प्रेसिडेंट कौथौजम हानी एम एल एन लोकल सरुक याखी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी म्यांमार की राष्ट्रपति उमिन ओंग लाइंग न्यू दिल्ली वारी सानक्रे वारी सानबद मूंग इतिहास सभ्यता की मरी हेन चेसिलहब खनखे सेक्युरीटी कनेक्टिविटी या भारत के म्यांमार लेने मरी पुनमु वारी सानबद म्यांमार की राष्ट्रपति नेरम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन उनगनी राष्ट्रपति मंगान की भारत खोचता थाजुट बिहार की कयाद थूलबनी कैबिनेट मंत्री मकोक थोब ऑफिसल ललोन इतिके लुचिब अवांग म्यूर का लोनरी नौ बेंगोल की मंत्रिमंडल अनौब मंत्री कुंथ्रा मंग हापसी चौथोक्रे कोलकाता की लोकभावन पांथोप थरम राज्यपाल आर एन रविना अनौब मंत्री थबक पाब अरब की वाचक लौखी अनौब मंत्री राज्य की तोान तोान सरुकनी अहब मंत्री ओरप क्या यौरी वाचक लोब की थोरम मुख्यमंत्री सुबेदु अधिकारी राजनीति की मकोक थोब लुचिब क्या यौकी मंत्री पाईगदब फम कौन लाथोकनी केंद्र की जल शक्ति मंत्री सियार पटेल साइंस टेक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह न्यू दिल्ली इसिंग की मरम रिसर्च डेवलपमेंट की जाति था की वर्कशॉप पुनः हौदोक्रे थोरम वांगद श्री पटेल है वर्कशॉप इसिंग तांब कौन कूप खनगनी थोरम जल शक्ति मंत्रालय इसरोग वाटर रिसोर्स एसेसमेंट मोनीटरी मेनेजमेंट की मतलब सेटेलाइट अफब टेक्नोलॉजी एम ओ यू सही तौनखी सुप्रीम कोर्ट की अनौब जज मंगा हाख्रे मकई थारगा चीफ जस्टिस यौना कोर्ट की जज मसिंग Kuntatarek Shure. Social media da Takat Pawarul Amadal Law Masung Justice Mantri Arjun Ram Meghawal Nahai Rashtrapati ne Bharat ke Chief Justice ka Kupna Khanara Batungda Supreme Court ke Anubha Judge Mangadu Haukibani Pauloi Jare.

0: आकाशवाणी इम्फाल हौजी पुफम ताबीर से रेडियो डॉक्यूमेंट्री सीरियल उमंग लाई हराव मापन सुब तक अईब एल अशोक कुमार पुथोप थांजम इबोचा सिंह लौर से रेडियो डॉक्यूमेंट्री सीरियल उमंग लाई हराव मापन सुब तक
1: हौजी ताबीर से परिंग चतरीब सकम उमंग लाई हराव मापन सुब तक अईब लाइफाकम अशोक कुमार पुथोप थांजम इबोचा लौर से सकम उमंग लाई हराव मापन सुब तक

0: lai ikoram dai da mai bina ising ma pan da jagoi sariba sina masabi asiba chingu sana mahina malem semlak pada masano konjin tu thuk pa pakhang ba hara bhai na su khangna ba asina malem le semba bu thugai duna manghal labada atya yai birel si dabana nong thanglai ma bu puthok tuna nong thanglai mana jagoi saduna hara ba bu mamik thaghan duna nga holingai da masabi asibana laibak semba loikiba adubu lai harau bada matau tamduna sabani
1: lai ikoba matamda maibina layomani punna paishinduna isingda luptuna ikoraga kona khaidoktuna lining thau lairimbigi ihai phuda tongan tongan hapana matomta lairamba atiya sidabana masanau laimarel sidabiga punna chongthoktuna malemda chada nokda sandorakhiba madi tengban basibu semkiba dubu phongdoi
0: lai ikoba karak laga laisang yaurabada lining thau gi layom dagi lai mapo mapal na yet thamkiba lairimbi ki layom dagi laipop taret na oid thamkiba asina atiya si dabaga laimaril si dabiga ani dagi laibung thau mapal amati lainura taret puthukiba adubu phongdoi
1: lining thau gi layom dagi atiya si dabagi laipop manga dagi ahumna lining thau da ani na lairimbi da thamliba asina taibang panba sida thawai panba lengli paliba achachatta pumna masina matom tachada nokda sanduk payade taibang panbu ngakli basi nupa nupi anina nga e haibasi phongdokli
0: umanglai harau bagi thoramda ahan bada mai bina jagoi khutek lining tho amadi lairembi ani gi laimangda katli basina laiseng mai gi matamda nongthang laimana laisem nongsem jagoi sakiba adubu phongdoi
1: laibung thoma palamadi lainura taretna laukiba thauda angadugi masak nupa nupi singna jagoi saduna phongdoi लैसेम नोंसेम बमोंग ताकतुना जगोई साब लोइरगा लाइबौ जगोई सादुना थवाई पान बसिंग सेम लखिबगी मवोंग जगोई खुथेक नफोंगदोकतुना सारग उतली
0: लाइबौला थाबा हाइदुना उमंगलाई हराउद पांगथुकलेबा थौरम असिना इसिंग तरंग ओरिङैदा तेंगबानबगी मपु महाकना मतौ करमन लैरमबगे हाइबदु फोंगदोई लारोल अहुम थारगा फिथुप अहुम थुपफि अमत थादुना मथक तलैहुल तमलिबा असिना taibang laisemba mapuna mai ising nungsit tarang ahum gi mathakta posak ahum masipu phida oina thaduna madu gi mathakta laikibabu phongdoi
1: maibina chongkhong mari gi marakta karal karal chatuna sanari basina laisem lakhiba matam gi ahan bada mirangumna koiduna paphal lirau sem khiba mawongadu phongdoi
0: mathakta khalliba phi aduna ising tarang mathakta ahangba atia lairiba sibu phongdoi लारेल मथेक चटपा हाइना चलिबा सिना मालेम तेंगबानबा सि सेमलखिबा मतमदा तु खोंग खोंबा लुकलांग इदम खोंलम सिंग पा तुरेल सेमखिबा अमदि मियोइबन मालेम द खुंदादुना युमलिंग खुलिंगदुना लाइखिबा अदुबु फोंदोई
1: पेनाशकपना होइरो होया लाउबना तेंगबानबगि मपु अतिया सिदबगि पिबुक नंगदगि थवाई पानबा सिंगबु होइदोरखिबा मदि hayana khoimom lairimbi laimarel sidabina yakiba dubu phongdoi umanglai harawbada khayom lakpa haiba thoram mama lai ikobuda pangthoi masigi maruoibadi lining thau lairimbi singbu pijapithakpani khayom lakpagi lairondi
2: he guru irai laimana yaida lai ikai ningthauna khada lai ito ningthauna thakta lai iret phungda lepi yu ita phungda tabi yu yawa singu sidaba sana napham langda tara khayom cheyom si kaseri nadaire nakhun khumpu lel asangba singu ibungo khoyom ibem magi harau sakhem tamba tara khayom cheyom se kaseri ye he guru
0: lai iko boloiraga iru lai sol haiba lai rol asi sonduna anam aha churamba pumnamak sengdoi लाइरोंदी
2: हे गुरु अकुरो मसी वांगबन मनावी कसा लाइनं ए खाकपा पुलेरोंबा पुरांग नागावा खोमरोकी ओंदेवा खोमरोकी ओना हलाईबा थमनांग नानी लोंबा फेंग्राई लैतुम नुंगदुम इ आरामबम इदी वाइचेल इ असांगबम इदी वाइकेमे नोंथो सरारेल मरी मरिकपा संगोन भी संगोन बा इबेन पिथाई खोंग्राई भी असे मसाही भी नंगा सेम भी ओ साबी ओ हा हा एं
1: ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯐꯝꯂꯣꯟ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯥꯌꯥꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯠꯅꯈꯤ꯫ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯥꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯕꯗ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯎꯌꯥꯟꯂꯣꯟ, ꯍꯤꯖꯤꯡ ꯍꯤꯔꯥꯎ, ꯑꯧꯒ꯭ꯔꯤ, ꯂꯥꯏꯔꯩ ꯃꯄꯥꯎꯁꯥ, ꯈꯦꯟꯆꯣ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯅ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗꯦ꯫
0: ꯂꯥꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯆꯤꯡꯊꯛꯇ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯄꯥꯟꯊꯣꯏꯕꯤ ꯑꯅꯤꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯅꯣꯏꯔꯣꯟ, ꯎꯌꯥꯟꯂꯣꯟ, ꯑꯧꯒ꯭ꯔꯤ, ꯈꯦꯟꯆꯣ, ꯂꯥꯏꯔꯩ ꯃꯄꯥꯎꯁꯥ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯅ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯔꯥꯎꯈꯤ꯫
1: ꯂꯥꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯆꯤꯡꯊꯛꯇ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯔꯖꯤꯡꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡ ꯄꯨꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯉꯥꯛꯄ ꯂꯥꯏ ꯃꯔꯤ, ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ, ꯃꯥꯔꯖꯤꯡ, ꯋꯥꯡꯕ꯭ꯔꯦꯟ, ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯎꯃꯪ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯎꯃꯪ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯗ ꯑꯅꯝ ꯃꯊꯧ ꯀꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏ꯫
2: ꯃꯥꯡꯁꯣꯡ ꯃꯗꯥꯡ ꯃꯗ ꯐꯝꯂꯦꯟ ꯃꯗꯥꯡ ꯃꯗ ꯌꯥꯇꯪꯗ ꯀꯣꯗꯥꯡꯗ ꯇꯥꯛꯇꯨ ꯏꯗꯥꯏ ꯃꯗ ꯁꯦꯡꯈꯣꯡ ꯅꯥꯔꯤꯟ ꯃꯕꯨ ꯄꯔꯩ ꯍꯣꯉꯥꯝꯃꯕꯨ ꯊꯨꯅꯥꯝꯕ ꯅꯥꯉꯩꯕ ꯆꯥꯁꯣꯡꯕꯝ ꯅꯥꯎꯁꯣꯡꯕꯝ ꯃꯥꯡꯒꯣꯜ ꯂꯥꯡ ꯅꯅꯨꯡ ꯂꯥꯡꯒꯤꯕꯨ ꯅꯁꯣꯏ ꯄꯥꯟ ꯕꯣ ꯅꯉꯩꯕꯨ ꯊꯥꯔꯩ ꯂꯦꯅꯩꯃꯗ ꯇꯥꯔꯁꯤꯅꯣ ꯈꯨꯟꯖꯥꯎꯕ ꯂꯩꯆꯥꯎꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯥꯡꯕꯗꯤ ꯃꯗꯥꯏꯔꯦ ꯀꯨꯄꯨ ꯑꯆꯪꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯍꯧꯔꯁꯅꯣ
0: ꯂꯥꯏꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯍꯧꯏ꯫ ꯃꯥꯏꯕꯅ ꯂꯥꯏꯕꯨꯡꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯪ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯇꯥꯏꯔꯦꯜ ꯄꯨꯡꯐꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯁꯣꯜꯂꯒ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯈꯨꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯥꯒꯩꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯛ ꯁꯥꯒꯩ ꯁꯂꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯥꯄꯤ ꯁꯤꯡꯕꯤ, ꯎꯔꯨꯡ ꯃꯅꯥ, ꯈꯣꯛ ꯃꯅꯥ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯨꯞꯂꯒ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯁꯣꯟꯗꯨꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯏ꯫
1: ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯅꯤꯕꯨ ꯀꯧꯈꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯏꯕꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯃꯤ ꯍꯥꯞꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯅꯝ ꯃꯊꯧ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛ ꯆꯥꯝꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯏꯔꯦꯜ ꯃꯁꯥꯅ ꯈꯤꯛꯇꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯏꯔꯣꯜ ꯁꯣꯟꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯏ꯫
2: ꯊꯧꯔꯤ ꯊꯋꯥ ꯄꯨꯡꯗꯣ ꯇꯝꯂꯤ ꯊꯋꯥ ꯃꯥꯕꯨ ꯂꯥꯟꯅꯪ ꯍꯝꯗꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯄꯨꯡꯗꯣ ꯇꯝꯂꯤ ꯌꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯥꯕꯨ ꯂꯥꯟꯅꯪꯗꯦ ꯌꯥꯋꯥ ꯀꯨꯝꯈꯥꯡ ꯁꯥꯒꯦ ꯄꯨꯡꯗꯣ ꯃꯊꯪ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯄꯥꯂꯣ ꯊꯧꯒꯦ ꯅꯨꯡꯖꯥ ꯄꯥꯂꯣ ꯊꯧꯒꯦ ꯉꯥꯅꯔꯦ ꯇꯦꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥ ꯍꯥ ꯏꯪ
1: ꯑꯅꯝ ꯃꯊꯧ ꯀꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯥꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯍꯟ ꯇꯧꯏ, ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯌꯨꯍꯥꯔ ꯍꯥꯗꯨꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯦꯛ ꯅꯤꯛꯏ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯁꯤꯡꯅ ꯆꯪꯍꯩꯗꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯆꯪꯂꯨꯕ, ꯆꯥꯍꯩ ꯊꯛꯍꯩꯗꯕ, ꯆꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯆꯥꯔꯨꯕ, ꯌꯦꯡꯍꯩꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯌꯦꯡꯂꯨꯕ, ꯌꯨꯃꯥꯡ ꯀꯩꯃꯥꯡ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯀꯤꯕꯤꯛꯄꯨ ꯑꯅꯝ ꯃꯍꯥ ꯆꯨꯔꯝꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛ ꯆꯥꯝꯊꯣꯛꯏ꯫
0: ꯑꯃꯥꯏꯕꯅ ꯑꯅꯝ ꯃꯊꯧ ꯀꯣꯛꯄ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯄꯨꯔꯩꯔꯣꯝꯕ ꯅꯍꯩꯔꯣꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯜꯂꯤ꯫ ꯂꯥꯏꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯎꯃꯪ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯗ ꯁꯣꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯎꯃꯪ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯨꯃꯥ ꯁꯨꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯨꯃꯥ ꯁꯨꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯤ ꯈꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯎꯃꯪ ꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ꯫
1: ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯆꯤꯡꯋꯥꯡꯂꯛꯀꯤ ꯄꯨꯔꯩꯔꯣꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯉꯣꯝ ꯁꯂꯥꯏꯒꯤ ꯄꯨꯀꯣꯛ ꯀꯣꯏꯈꯤꯕ ꯃꯤꯁꯛꯅꯤ꯫ ꯂꯝꯂꯥꯏꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯨꯕꯝ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯎꯃꯪ ꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯔꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯨꯔꯩꯔꯣꯝꯕ ꯍꯔꯥꯎꯒꯗꯕ ꯅꯣꯡꯃ ꯋꯥꯠꯂꯤꯉꯩꯗ ꯄꯣꯏꯔꯧ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯩꯀꯠ ꯂꯩꯀꯠ ꯇꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯌꯥꯗꯦ꯫
2: ꯅꯍꯅꯣꯡ ꯊꯧꯕꯤ ꯇꯦꯡ ꯂꯣꯏꯕꯤ ꯇꯦꯡ ꯆꯪꯂꯩ ꯉꯥ ꯇꯥꯡꯂꯩ ꯉꯥ ꯉꯥ ꯉꯩ ꯋꯥꯉꯥ ꯅꯉꯩ ꯁꯤꯡꯁꯨꯉꯩ ꯁꯥꯁꯨꯉꯩ ꯆꯔꯣꯏꯅ ꯈꯣꯡꯗꯧꯉꯩ ꯈꯦꯠꯇꯧꯉꯩ ꯌꯥꯝꯕꯤꯅ ꯈꯦꯠꯇꯧꯉꯩ ꯈꯣꯡꯗꯧꯉꯩ ꯍꯨꯏꯊꯧꯅ ꯆꯤꯐꯦꯉꯩ ꯂꯥꯏꯔꯦꯟꯅ ꯌꯥꯎꯉꯩ ꯂꯥꯡꯃꯥꯏ ꯍꯤꯖꯤꯡ ꯍꯤꯌꯥꯊꯧꯅ ꯊꯤꯡꯒꯥꯏꯔꯦ ꯂꯧꯈꯥꯏꯔꯦ ꯑꯉꯧꯕ ꯄꯨꯂꯦꯔꯣꯝꯕ ꯆꯤꯡꯉꯨꯏ ꯕꯣꯡ ꯍꯪꯒꯦꯂꯣꯡꯅ ꯇꯥꯕꯗꯣ ꯑꯉꯥ ꯑꯉꯥꯎ ꯍꯧ ꯁꯤꯡꯀꯨꯞ ꯁꯤꯡꯒꯥꯏ ꯍꯧꯔꯕꯗ ꯑꯃꯥꯏꯕ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯂꯩꯍꯧ ꯃꯥꯏꯅ ताइरें लोंग मालाउना लाया किपे चायरा वदा पुलेरो मरों थोक मरी थोक तबा मरी थोक ना कुन थना लान थना नुंचु मोपो की न चुप्ची लाई खारो लाईरो कोई न पाले न सेम न सिंगु तिंगो न न कोयुं लाई को न गिया दुगु मदना सिंगु मो कोयुं लाई तो अनी की सिंगु तो कल कोयुं न तो कन मदा संग नंबा पिन नंबा तिन नंबा लाई नंबा पिजी पिना न हुंगी बबू ताईरें पोंग पाई न लाई सिंग चाई दना सिंगु तिंगो न रे कोयुं लाई को न रे तिन सेंग न रे लाई सेंग न रे हाँ
0: लाइरु लसीदा पुरे लोंबा अंगक अंगाउ हौरे हारिबा सिगी वारी लै नोंमाइजिंदा खलों संगा युमफम अमदी निंगथेम युमफम हाइना लैरिबा लाइफम असिदा मचिन मनाउ अनिखख अंगांग ओइना लैखि मतमसि मणिपुरदा येक सलाई खाइदिङै यि मतमनि
1: लाइनिंग थौ पुरे लोंबागी हौरकफमसि कोनछौ रेना लायेक लाइखु पानदुना कुप्त्रेंग अमसदी सेंट्रेंग अनियम पोई येक सलाई खाई मसाबी कुप्रेंगी चदा नौदासिंगना अंगुम सलायोकी अदुगा मसानौ सेंट्रेंगी चदा नौदा मखैना निंथौजा सलायोकी
0: सानौ मचिन मनाउना खुनुंग चक हाइबदि ख्रिस्तगी ममांगदा कंगलै पुंगी मयोन कंगलादा अयुक नुंथिल येंथोंनदुना लाइबाग वायन जथकी खाब सलाईगी ख्वाइ नुंजेंग पिबाना सनौ मसिल मनाउगी लालुप मिनाई ओइदुना निंथौ मसिल मनाउगी अयुक नुंथिल नुमिदांग पथाबलैतना थौगल दौखि
1: ख्वाइ नुंजेंग मंपिबाना निंथौ मचिल मनाउगी मिनाई ओइदुना लालुप कांगैदा मिकुपमत पोथाब फंग्रबदा साउदुना मसाबी अहल ता हुइरेंग अहनबबु वाइरतेन निंथौ मयामबबु कापङैदा ताखिब इखेंगदुना पामेल उफै थक्त तारबदा सिंगे लैरांग चिगोंग लैओइना साथखिबबु असुमना सैसकनरी

0: masano centering apanba yoimayai lairil atonbadi lolang pakhangba kauna kanglei pungmayon thadoklam laga moirangi santhoklok chingbulokta lotuna laiki
1: angom salagining thau kuptrengna masano taloi marumbi khakpaning thau chanubu taloi oina lawi mapari ani satke khakpaning thau chanusu masabi kuptrengna sirabada matam khara leiraga nunga khibadagi nongmai khulakpa khulakpina angang ani adubu yokhi angang ani na chaurak sanglaklabada nongma korau amadi nongmai khulakpina sauduna sai thangduna warak watem taurubada mayam bana manau nipabu puduna ahing tanglau athengbada lonna chelakhi
0: uhai hairit kaunto hetuna cha chaduna lakpana phagnung chingol yoraklabada mayam bana manaugi mafamda ishano nang mafam asida leiramu nashabihak uhai ahawathum chanaba thiruge haiduna masana buthanam laga chatki
1: masapina uhai thiba chatkhringai talak asida kanglai pung mayonda laibak ningthau pandrabada samu yaisa thadoktuna ningthau oibinaba misak thihanki samuna purakpa misak adubu laibaki ningthau ohelasi haiduna lairingai chairakta masabina uhai thiba halakpada masanaudi samu aduna pukhiramle
0: masabina halakpa matamdadi manauni padi lairamdre koithi thirapana lamlaigi haujik purai rombana lairiba laifa masigi lai sharubina lairiba lampa kasida angang mayamna sanaramba bu thengnaki angang mayamaduna haujikta su anganga ma samuna puraga chatkhibada mangairi anganga ma muglagle haiduna mayambagi mafamda omsinduna hankhi
1: mayambana maduda ki khiduna wa amata ngangdana tumina laikhi angang mayam aduna masibu angaubara haiduna phuro haina mayam changduna ureiro masana phubada khangba ngamdraduna mahak angaubana te aigi inaunupa mangki babu thirakpani paukhumlabada mayam aduna nangge nanauni padi haujikta sammu tongduna chatkhre haina takpikhi
0: matang sidani pureirombana anga kangau hokibasi haujik phawbada marei lomba mida ureiro masana kallabadi marol thu ihainari purai romba nahai rolasi lai chaklung katpada madi umang lai harau bada shonbada natana ataida su sholi
1: manau nipabu konung manung da pusin khrabada mayamba purai rombadi manau bu thiba phangdabadagi taupham khangdana madom halwai raktuna angomning thau oina pankhi
0: purai romba nahai rolasi sonba loiraga hebu rol haiba lai rolasi maibana muk sholi lairo lasina tairibasi yumnak sagai kayana pullaga khullama semi khulladuda mishi chadana sikiba poklabasu miyoi chadana poklakpa yawi madubu kasha kawi adugumba phattaba laisinga sina taibang miyoi bada apan ayet anayek mishi mina thogan biganu haina taibani
2: kumsana kumli laina awang kauba chingthang langda kumaite kumbi pokpina kumbi han tarang na tarang han kege yanghu jam ningon bina khoima naron nungda langlen tong na kungyang seishu na phaina lamna nembi maka sabu singu matai tho khoyu matai tho ku tairabane
1: heburul sonba loiraga haisoi ipan tha ba haiba thauram asi lairon chonduna pangthoi lining thau lairembi anigi mafamda masamasu oibasingna ngamjaba hailai kalli aduga nungaiba yaiphaba khunjau bolai chauba chahung ahong ba pinabiu haina khurumjai
2: simu khoyum lining thau yoibu khoimom laire ma simu natei nanaugi nakum kumbi tungau da matha thasin e thagau dana thamna laira pan chamu sengo pan tungle leisang pan gi laibung tho ma pan ma lai nora te ma hai sho yu pan than saroi humphu ma thoi ma ki haulam yel loi kun pha ba ngai ro singmi lam pha ba kasha haining singna somoyame singshan nubina pikat ki pikat sing huyel lanmin narababu phan sing haisho yupan tharbane
0: maibana haisho ilai pal thabagi thoram loiraga atai laishol amuk sholi
2: 해그로 언농 더랜보 따이래 설아랜보 따이게 빠킹버부 따이게 뿌랑 나가버부 따이게 마릭비 마릭바 성곤비 성곤바 이벤 비트라이 콩드라이비 아세마사이비능부 따이게 와트레이비 실레이비 우트레이 실레이비 능부 따이래게 하잉
1: 아퍼버 누아이바 갑양 따양바 비나비우 파타 하우디 키빅부 하우레이 카나 빵바 마이케이다 왕드렌 카나 짜오바 깡레이 마수망다 빰바 케이비 카렐 마피 마차나 차키 수노 렘호바 파타 하우디바 뿜나 막나 통낭 몽비 찡룽 호타 호이타비람모
0: 아퍼버 누아이바 갑양 땅양바 लेबाक मरा तप्पा निंगथौ पुंछिबा चाहोङा होंगबदि हाउरे अवांग पांगना होइगत पिरौ नदाइरेम नखुल खुनबुकलेन अचंगबदि कुराव फानवाटपा नमु पोंग नहेनबा पुंछि चरै नुंगसांग बबु मपारी सुक्ता ममोम सोइद बबु मोमनु युंबुम तरेत लनखाइ बियो चिंगुबे यावा पुंछि लनखाइ बिरौ अवांग कौब्रुआ सुपगी कंगलेइ मसुमांगदा यांगोई सामुआंगौबी मपी मचाना सिटना नान कोनसिनबगुम लाइरेल नखुन खुनबुकलेन अचंगबासिबु थवाई नोंबुम अचंगबबु अयुक गन कोनथाबियु नुमिदांग गन कोनसिनबियु चिंगुङाक्लौखादा पुनेम जरिए
1: अमाइबना अताइलाई सोन सोनबा लोइरागा खुनथोकलोल हाइबा लाइरोल सोली मिसिंग यामद्रिङैददि मीताबा खुंगङासि मसिंग यामलमदे मरमदुना लाइबाग असिद ngalingai matamdagi taramba khungang sing adubu kaudana ba mi singna karamna palamba ge haiba lairo lasina saithai
2: mahanong khununa lainungna khanuna nganuna nahana nupina yaungai phudongai wanthongai phoksum phora thok pulang loiroi thong laija ipalang phaya popte lai imu mayon sel लाइराय हुशंगा मसिन मनं ताव हाइगोय मसिन जो लाइन पिबम फांगैगे सारोय लालुइन मतिन नंगै पानरे सेंदरे हां हाइन
0: ताइबंग पानसिदा मियोइबन लौसिंग सिंग्रिङैदा इसिंग सोक पहौरकपा चफुयान सा भौरकपदा नुरा खुंदोंग लैगि मवोंबु मान साखिबा तेंनौ मकुने यैरग चफु साखिबा उतोंगदा तुम्बादैसिं सोकलमबा चाक थोंगदुना चारमबा दुतोकतुना चफु उयानदा चागिन सांग थोंगदुना चाखिबा दुबो निंगसिंदुना सोनबनि
1: खुनथोकलोन लाइसोना सिदा खुराय वांखै याय स्कूल अमदि ख्वाय हायना यावरि पाना मरि हायना लाइरिबा लमसिं असिगि तोंगान तोंगान बा मफमद लाइरिबा खुलसिं असिना अहानब खुनथोकलखिब खुलसिंने हाइबसि लाइरोनसिन खंगहलि
0: असिदसु नतना लाइशोलसिना तिनथुंग लाइथुंग मिसिमिना वाथोक लानथोक लैबबु कोकपियु हाइना खुलगि ओइना थौरम तौबदा कोकथोक ताइथुई मसिगि मनुंगदा खुराय खुनफमलेन चेंलै उंगताक लालोय अहोंगै हाइरिब मफमसि अहानब खुंदालै ताकिब लाइफमने खुराय खुनफमलेल असिदा अंगौबा युमखु युमलेम्बा अंगोम कांगबुना हान ताकि हाइबसी लाइशोलसिना खंगहली
2: नाहनों खुराय अंगौबा

0: โรมิก้าตาวรานี่นังบ่อังเตลาวนี่ซะซังดา
1: โอ้ไกดอระเกปาเลมนุงชิบีนะมอมดีปานิปัดกิลานดาโคกงเอาเซรีเ
0: อโอชิมตะลุซินกิซิลาวมีนังกิปานิปัดกะดอตักปิเกไ
1: อยาวเซรีเอยาวเซรีเอปาเลมลานกะลอยฮันดอกเซรามะตักปีนี่ไฮบดุดาkari tawzara o haibano na mombo
2: tida ha ma si ngang ji di kai ba chu khang de se se se sai je am talo se lo se am ta se lo
1: aduga panipat ki lando sai da sokna ra se haibro pa le
3: romika romiko ima ima lai tro
2: e thui ba ki ma khon ma le ni ai bungwa akoi sak sang de lai e sang au sang au
3: oi ma
2: hna kai no du yam lum na pura itu dia
3: lum de da kai shui ma ngarang alu tan ba adu da ima khoi gi piro so da na pura ine
2: ishi ishi kali gi pura ino ne
3: pabung na so romika gi saru piro so na pura ine ma adu ga ima kai no ma so hangge tau ba
2: hoi ni hoi ni kali no
3: ima pani pat to khang dra ba adu da ima gi nak ta la ine ma
2: tu tu tu hau ji ta ma so hai la mini tak pige tak pige ima yengo lai pa phongka de lai ramo ai la age chai me am sem to lo chalam gi ko noi lai ramo chalo
3: hoi ma
1: ai sao jikta pani pat kal oi ko ngaw re hai rami ne ima da nang chalak pa yam pha re
2: kada kada kai jore hai bano
3: ima pani pat ki lal ga mogal singh na lak pa ga ani gi samna pham se khang dre bai
2: hera irai lai ba po ni se ima ha gi ko ado nui o jana sleep dynasty ga di ta khrab na tro
1: tak pi gre kutub udin khalji tuglak adagi lodi hoi gi dynasty pare nga ma
2: chumi ado gi iroi loi ba to yam na shon ba ibrahim lodi ko ba sultan amane ning singi bro noi bo
3: ning singi ema ma gi matam da lodi dynasty marai chai thaki
2: chummi mana haibadi ibrahim lodi na panba matam sida ko mogol singna bharat ta ihan hana changlaki matam sida mogol singa se khukan pangan ba matam moi ki ko chwai sida ne mogol sing sigi haurak pham se hana haigi ko
1: hoi
2: mogol singa se mongolia somda yam na mapangal kalamba chinggis khan haibaduga taimur haibaduga gi chathang suthang ni ko भारत इहान हान लाखिबा मुगोल दी बाबर हाइसिनी
1: ओ
2: अग्रादा इब्राहिम लोदी ना मपांगन छोन ना लेंगाक पगी खुदुंग चाबा लौरगा बाबर ना इंग्लिशिंग मगा चांगा कुंतरुक्ता लंदाखी मसिबुनी अहान बा पानीपत किलान हाइसि खंगद्र लालासिदा बाबर ना इब्राहिम लोदी बु माइथी बा पीदुना दिल्ली अमसुंग अग्रा लौसिलमे लालासिदा इब्राहिम लोदी ना माइथी बा सिदगीदी दिल्ली दा सुल्तान सिंह की लेंगाक पगी मतम छुलो सिन की को खंगनी को पानीपत की लान छ हायुने अमता खंग मरी यंगे बा
3: बाबर ना भारत मोगल सिंह की साम्राज्य म लिंखना बा मतम दुगी दिल्ली अमशुंग अग्रा की सुल्तान इब्राहिम लोदी गा इंग्लिश सिंह म ग चंगवा कोन तरुक त थेंग नखी बा लाल अदुबु आहान बा पानीपत की लाल हाय न खंग ने चुमरे मा
2: चुम्मे ने अदु जन को गाव रे ने नुहे नि ना हरिस ने करी गि नुमी
3: इमागि नाक ते योरु पदगी को गाव ग लोय फाग रे दा
2: इसा ने गान थोरो पसिना फरे से मखा मु हाय रगी को
3: होय मा
2: पनीपत के लान मतुंग दगी बबर ना मुगोल साम्राज्य लिंग खतु न पान बा हौरे को मुगोल सिंह ना पान खि बदा मखोय गि टॉप टॉप पलेंगाक लोन खुनाई लोन लाइनिंग लाइसोन अमदि नाथ कि चनेबी पुशिलक तुना चनहन की को
3: कावरो इमाना ताकबी बसे
2: दिल्ली यमसुंग अग्रा लौसिलब मतुंगदा मेवार गिनिंग थौराना संगगी मखाद लैबर राजपूत कन्फिडरेसी अमदी मतुंगदा ग्वालियर धौलपुर अमसुंग अतै अतै

खंगन जबा मा लाखली बजुन की तांग अहुम युमसा कैशन उमेद गुड आफ्टरनून लेडीज की थौरमदा थमजरी आइखोय की वाकत थमजरी बहिरमना नुपी सिंगी याइफना बलेरीबा लेंगा की स्कीम सिंग एक्सपर्ट होइना लेंगसिन बिगदाबा गुरु मयुम रवि शर्मा एडमिनिस्ट्रेटर वुमेन हेल्पलाइन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मणिपुर लमदम से की नुपी ओबी सिंगना आइखोय की स्टूडियो की टेलीफोन नंबर 879-880-3293 ता कॉल तौबिरक्तुना खंगनिंगबा हंगनिंगबा कया खंगहौबगी खुदोंचाबा लौबियु नंबर अमुक्तंग हननिंग सिंजरी 879-880-3293 खंगनजबा लुइजरी

लव धुक छबामा आकाशवाणी इंफाल की म्यूजिक सेक्शन की बी टू बी हाई का ननबगी म्यूजिक ऑडिशन लागली बजुन की तांगनी पांदगी हौजरगनी एडमिट कार्ड लौबी खबर कैंडिडेट सिंह ना इसा इसा की ऑडिशन नुमित सिंह आकाशवाणी इंफाल की नोटिस बोर्ड तक यंगबीरबा यागनी खंगा जबलोई जरे

0: पड़ोसी है। पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: खोंगनांग थाबे यूनिवर्सिटी खुराई कोनसम लेका इंफाल ईस्ट के एकेडमिक सेशन लिसिंग अनि कुंतरुक कुंतरेत के एडमिशन हौजरे पीएचडी प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट कोर्सिंग अमदे आयुस के एप्लीकेशन फॉर्म जुन तरा तरेत फाउबगी मनुंगदा थाजन बिगदबने इंटरव्यू जुन गी तांग कुनि थोइद पांगथोक चेरगा जुलाई तरा तरेत गी सेशन हौजरेगने ग्रेजुएट कोर्सिंग गी ओइनदि मॉर्निंग अमदे नाइट शिफ्ट खक्तम क्लास तौजगने अकुपमरुल गी दमक यूनिवर्सिटी गी वेबसाइट www.khongnangthabeyuniversity.ac.in चंगबियो नत्रगा यूनिवर्सिटी के ए ब्लॉक ता ऑफिस अवर मतम द लाकपियो पुकई सर्विसेस सिंजमई वांग मकोंग रोडना अदोम की दमक मखल कया की सर्विसिंग पिजरी अदोम की युम कई सानबा नुंग लेंगोय मखल सुन फंग बिरगने अदोम की अपाम मतम दा खुसिनन ब थौरांग तौजगे नोमो वाटलिंग द पाउ फौ बिरउ नसिम कांटेक्ट तौ बियो पुकई सर्विसेस सिंजमई वांग मकोंग रोड टेलीफोन नंबर 7005722788 नत्रगा 6009896415
3: आकाशवाणी इम्फाल हौजिक नुमिदांगी पुंग तरेत मखाई तारे मणिपुरी दा पाउ ताबिरसे।
4: आकाशवाणी इम्फाल माइबम दिजमनी ना पाउ पाजरी अहानबदा मरोइबा पाउ। मणिपुर की राज्यसभा सीट अमगी मिखल पांगथोकनबा नोटिफिकेशन थोकले था आसिगी तरानी पांद पोत थादनगनी। मुख्यमंत्री युमनाम खेमसान हैरी मेरिट युम्फम ओइरगा थाबक लौबा हाइबसी सरकार की ख्वाइदिगी मरुवाइबा थौसिलनी।

0: ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯀꯦꯁ ꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯨꯔꯦ. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯅꯣ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣ ꯗꯦ 2026 ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤ ꯎ ꯃꯤꯟ ꯑꯣꯡ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯒ ꯉꯁꯤ ꯅꯩ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥ ꯁꯤꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯂꯦ. ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯇꯔꯅꯤꯡ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯤꯙꯥꯟ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯔꯣꯍꯤꯠ ꯁꯥꯄꯝꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞꯁꯦ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯔꯤꯇꯔꯅꯤꯡ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯔꯤꯇꯔꯅꯤꯡ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯦꯜ ꯙꯅꯁ꯭ꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗ ꯁꯨꯇꯤꯔꯇꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 13:00 ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 3:00 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯤꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ. ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯖꯨꯟ 9ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯤꯙꯥꯟ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠꯇ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯨꯇꯤꯅꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ. ꯃꯤꯔꯦꯞꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯅ ꯖꯨꯟ 13ꯅꯤ. ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 13ꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 9:00 ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 4:00 ꯐꯥꯎꯕ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯅꯒꯅꯤ. ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯄꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁ ꯂꯩꯁꯦꯝꯕ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 13ꯗ ꯂꯣꯏꯔꯒꯅꯤ. ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯔꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯦꯔꯤꯠꯇ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯁꯤꯜꯅꯤ. ꯉꯁꯤ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠꯇ ꯑꯦꯝ ꯄꯤ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯌꯥꯔꯄꯔꯁꯟ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯁ ꯁꯕ꯭ꯔꯥꯒ ꯎꯟꯅꯔꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯔꯚꯤꯁꯇ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯇꯕꯨ ꯈꯟꯅꯕ ꯑꯃꯛꯄ ꯂꯩꯇꯕ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯩ. ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯦꯔꯤꯠ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯦꯟꯖꯥ ꯊꯨꯝꯖꯥ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡ ꯈꯟꯕꯅꯤ. ꯃꯁꯤꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ. ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯀꯦꯁ ꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯨꯔꯦ. ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯁꯇ ꯊꯨꯡꯂꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯒꯥꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯅꯔ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯈꯤ. ꯃꯨꯀꯦꯁ ꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯨꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕꯗ ꯒ꯭ꯔꯤꯍ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ. ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁꯅ ꯍꯥꯏ ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯅꯕ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯗꯥꯏꯇ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯩ. ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯆꯍꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯤ ꯖꯤ ꯄꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯂꯕ ꯔꯥꯖꯤꯕ ꯁꯤꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯉꯔꯥꯡ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ. ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯣꯊꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ, ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡ, ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯈꯤ. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯗꯤ ꯖꯤ ꯄꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ. ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯅ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃ.
1: ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯗ ꯇꯣꯏꯅ ꯅꯥꯒꯟꯕ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯀꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯈꯜ ꯁꯨꯅ ꯌꯦꯡꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗ ꯁ꯭ꯀꯦꯟꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯕ AOI ꯕꯕꯤꯅꯥ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ, ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗ ꯀꯦꯟꯁꯔꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯗꯣꯁ ꯑꯥꯏꯑꯣꯗꯤꯟ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ CMHT-PMJAY ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯖꯔꯤ. ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯇ꯭ꯌꯨꯃꯔ ꯕꯣꯔꯗ ꯐꯝꯗꯨꯅ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯤ. ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ NABH ꯐꯪꯂꯕ AOI ꯕꯕꯤꯅꯥ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ, ꯁꯖꯤꯋꯥ ꯖꯦꯜ ꯔꯣꯗ, ꯈꯥꯕꯩꯁꯣꯏ, ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯇ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯌꯨ.
0: ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯅꯣ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣ ꯗꯦ 2026 ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯈꯤ. ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ NICM ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ IMA ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁꯀ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁ꿤 ꯂꯝꯐꯦꯜꯄꯥꯠꯇ ꯂꯩꯕ IMA ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ. ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯄꯥꯂꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯤꯝꯅ ꯑꯟꯃꯥꯁꯀꯤꯡ ꯗꯤ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔꯤꯡ ꯅꯤꯀꯣꯇꯤꯟ ꯑꯦꯟ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ. ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁꯀꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯍꯦꯃꯟꯇꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡ, ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯤꯁꯟ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯦꯝ ꯗꯤꯅꯦꯁ ꯁꯤꯡ, ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁꯀꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯅꯣ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ IMA ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯁꯤꯝꯁꯟ ꯁꯥꯔꯤꯌꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯦ ꯀꯦ ꯏꯕꯣꯜ ꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯈꯤ. ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯃꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯇꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯁꯛꯁꯨ ꯂꯧꯈꯤ. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯞ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯕꯤꯙꯥꯟ ꯁꯚꯥ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯔꯤ, ꯋꯥꯕꯒꯥꯏ, ꯀꯛꯆꯤꯡ, ꯍꯤꯌꯥꯡꯂꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯨꯒꯨꯅꯨꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ 190 ꯚꯣꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯌꯨꯝꯗ ꯕꯨꯠ ꯂꯦꯕꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ BLA-ꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯄ ꯍꯧꯔꯦ. ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯗꯣꯜꯁꯤꯡꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯕꯨꯠ ꯂꯦꯕꯦꯜ ꯑꯦꯖꯦꯟ BLA-ꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ BLO-ꯁꯤꯡꯅ ꯌꯨꯝ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜꯗ ꯃꯤꯡ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ, ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ, ꯑꯔꯥꯟ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤ. ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜ ꯃꯊꯪ ꯊꯥꯒꯤ 5ꯗ ꯐꯣꯡꯒꯅꯤ. जिला अदुगि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर अंजेलिना रेनीतान हाय इलेक्टोरल रोल दा मिंग हापसिनबा लौथोकबा मदि अरान अहुई सेमदोक सेमजिन तौरिबासिदा सिग्नबा लैरबदि हेल्पलाइन नंबर 1950 नतरगा 8974130476 दा टेलीफोन तोरकबा यागनि नतरगा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर गि ऑफिसर लाखलगा तांगरबा यागनि मागना हाय
2: Now we are in the phase of house to house visit by our booth level officers. This is going between 30th May to 28th June. So in this phase, we are appealing to all the political parties, all the eligible voters, all the citizens and other stakeholders of the districts to kindly coordinate and cooperate with our election officials and district administrations. After this, we are planning to have the racialization of the polling station on 28th June 2026.
0: कांगपोकपी जिला की ओइनासु बूथ लेवल ऑफिसर सिग्ना जिला अदुगि विधानसभा केंद्र सिंह कांगपोकपी साइकुलमदि साइटोगी पोलिंग स्टेशन सिंगी बीएलओ सिग्ना युम युम द संगदुना इनुमेरेशन ड्राइव सदाबावरे ड्राइव असिदा बूथ लेवल ऑफिसर सा मुहम्मदरा तरुगना मागी मागी पोलिंग स्टेशन सिंगी वोटर सिंगी युम युम द संगदुना मिंग हापसिनबा लौथोकबा मसुं सेमदोक सेमजिनगी थाबक सथगनी डॉक्टर युमनाम राधेश्याम एमएलएन हायरी कक्सिंग जिला की मनुसर लेब हियांगलम विधानसभा केंद्र की लंबी थों अना लाइंग संग यावना मियाम की याइफ थोरंग कया खुमांग यांग ना संगसिनब लेपलेतन होनरी एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंदगी नौना साबा लांगमैदों सोशल वेलफेयर क्लब की बिल्डिंग संगाप की थोरम द एमएलए हाय लांगमैदों द लेरीब हायर सेकेंडरी स्कूल असिद सोथा हुरब इमुंग संगे महिरोय नुपा अमति नुपी यांखै यांखै लेमना महि तमलिब असिगी लैनब हॉस्टल साबगी थाबक लैसलगले मसिगी मथकता लांगमैदों प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग सु अथुब मतम द साबा हुरगनी हायना एमएलए ना मकाताना फोंदोखी World Environment Day lising ani kuntaruka mari lenena moirang khunau da pangtho pathor mamada u sara sing lemni thokre Bistupur jila gi moirang khunau da leiba oinam khage ma ko ba halore ba miyoi amana lanai miyoi yauna club amadi sangstan tara tarukta uhai panba u makhal tara ma thoi gi u sara lising tara taruk ye thokna ba thabak thorom ngasi de gi haure thoramatu da tongram robindro mla amasum forest amasum horticulture vibhag ki official ke asu sarvyakhi बिष्णुपुर जिला की मोयरांग लेब ताकमु एक्सपेरिमेंटल फिश फार्म था अहम की ओइना ऑफ सीजन लौथोले बिष्णुपुर जिला की डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिसर ने थोप चेरोल मदाई हौरगा ऑगस्ट कुंथ्रा मथोई फाउब चनगतोरीब ऑफ सीजन मनुंग ताकमु एक्सपेरिमेंटल फिश फार्म हुबीदाग साइट गा फाब चंग यारोय हरिब मतम गा फानब लाइसेंस पीरोय हान ऑफ सीजन मनुंग याउना पिथोकेब गा फाब की लाइसेंस खुदिंगमक ऑफ सीजन मनुंग चनरोय हायरी असम राइफल्स ना नंबोल की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग तोंगान तोंगान कांगलूप की विलेजशिप सिंग उनतुना तोंगान तोंगान वाफम किया खनख्रे कांगलूप अमगा कांगलूप अमगा नुंसी सानबे हेंगन हनबे की तमक वरी सानबे की तंगाई फदब लेब अदु मिफम अदु दा सरुक याखिबे सिंग फोंदोनखि बिष्णुपुर जिला दसु आईमोल वाइनेम अमसुंग बुंगते सिरु विलेज सिंग लुसिंग बतरा तरक उनतुना वरी वताई सानखि सोशल मीडिया दा लान पाउ संदोक पा थाजे बिदन बा मसुंग नुंसी सानन हिंगमिन न बगी वाफम मेफम मदु दा खनखि असम राइफल्स ने सिंधुना वर्ल्ड नो टोबेको दे की थोरम इम्फाल वेस्ट जिला के सिंह जमी दिंग पांथोखरे थोरम की मनुंग सन्ना हिदाग मना सिजन लबन हक्सांग दा मांग जब क्या की मतांग दा निंथी ने खंगन की हिदाग मना सिजन नदब लमदम अम ओहेल से हाइब वाखलों दा लेकाई लेकाई के अमदी सी एस ओ सिंह दा पाउजल पीब याब मसाक सिंह येंथोखी असम राइफल्स ने सिंधुना चांदेल जिला की खुंगन खरदा टीबी लेना की मतांग दे निंथी ने भाप थान बगी थोरम अमा हेल्थ चेकअप की थोरम अमा पांथोखरे टीबी मुक्त अभियान कैंपेन की सरुग अम ओइना सथगी बथोरम अदुदा खुंगन अनी की खुंचा हुमबुद्रा रोना सरुग याखी आकाशवाणी इम्फाल दगी पाउ ताबिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का म्यांमार की राष्ट्रपति उ मिन ओंग लाइंग नई दिल्ली से वरी सानख्रे वरी सानबद मपुंगना इतिहास सभ्यता की मरी हेन सेसल खनखि सेक्यूरीटी कनेक्टिविटी यावना भारत का म्यांमार लेनरीब मरी पुनमु वरी सानबदी लुसिंगबनी वरी सानख्रब नई दिल्ली पाई वांगांगद फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने हाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का म्यांमार की राष्ट्रपति का लेबाक अनी की लेनरीब वरी मरी पुनमु वरी सानदुना खनख्रे wari sanabaduda lalol itik amasung sel thumgi mari ngak sel amasung security amadi border management amasung lamdam sigi phibam khanaki Myanmar gi rashtrapati na makhoi gi lebag adu Bharat ki mayokta sejin nabai yahaloi haina amughana phongdoki hairi Myanmar gi rashtrapati asi numit mangali gi Bharat khongsata thangja numita Bihar gi gaya da thunglabani mahaka cabinet mantri sing makok thongbo official sing amasung lalol itik lu sing masing yauba awang tha gi miut kangbu ama loinari Kendrigi Low Singu Mantri Shivra Singh Chauhan Leibak Sinba Thungna Chathagadaba Khet Basao Abhiyan Campaign Ngasi Hokdokhre Tha Amasumna Chathagadaba Campaign Asi Madhya Pradesh Ki Raisen Jila Ki Malungsana Leiba Ramsia Khungangda Hokdokhi Campaign Asi Ki Maroiba Pandamdi Lophom Singh Ngak Sendunu Thambamadi Lomi Singbu Baigyanik Oiba Lau Patha Paikat Pada Hena Thawai Yahonna Bani Thormaduda Lomi Singda Wa Ngamada Sri Sawan Hai Lomi Singda Lophom Lophom Singgi Lehau Mangandana Boholagada Bani Yariba Makai Rasayan Gi Har Sejin Naroida Bani Tha Amasumna Chathagadoriba Campaign Asida Agriculture University Sing Indian Council of Agricultural Research Krishi Bigyan Kendra Madi Khangalaba Miyu Singna Lomi Singda Khangan Bigi Thorum Kya Pangthokani Leibak Lehau Sang Yangtokba Soil Health Card Yangtokba Ising Yoksin Mane Singba Kaya Lomi Singda Takpi Gani Campaign Asi Ki Manungda Lau Singu Gi Sarkar Na Paiketpa Scheme Kaya Gi Kudong Sa Basu Lomi Singda Phangan Gani Hairi Nongsu Bengal Gi Mantri Maltol Anoba Mantri Kuntra Manga Hapsin Turing Asi Sao Thokre Kolkata Gi Lok Bhamanda Pangtokpa Thor Mamada Raizapal RN Rabina Anoba Mantri Singh Adubu Thabuk Paiba Masung Aron Mangakpa Gi Wasak Lokhi Anoba Mantri Singh Adu Raja Ge Tongan Tongan Ba Saruk Singh Degi Niya Masung Ahanba Oina Mantri Oirakpa Kaya Yauri Wasak Loba Ge Thora Maduda Mukhe Mantri Subhendu Adhikari Masung Raja Niti Ki Makok Thongba Lusingba Kaya Yauki Mantri Singh Asina Pai Ge Daba Pham Kona Lau Thokani Kendra Ge Jal Shakti Mantri C.R. Patil Masung Science Amadi Technology Mantri Dr. Jitendra Singh Nangasi Nai Dili Da Isingi Maramda Research Masung Development Ki Jati Thaki Workshop Ama Punna Hautokhrai Thormadu Da Wangang Mada Sri Patil Nai Workshop Asina Ising Tang Bako Nabagi Matang Da Kumna Khanagani Thormadu Da Jal Shakti Mantra Loiga ISRO Ga Water Resource Management Monitoring Amasung Management Ki Matang Da Satellite Amadi Afaba Technology Sejin Nabagi MOU Amasu Sahi Tauna Khi Nagaland Sarkar na Raja Duda Tobacco Vendor Licensing Rules Hodoktuna Masung Madu Raja Sinba Thungbada Chanhanduna Hidangmana Thingnabagi Khongjang Hena Kankadhanga Dauri Ngasi Kohima da Raja Taki World No Tobacco Day Lisingani Kunturuk Pangthupgi Thorumda Raja Gi Haksela Masung Yaipa Yungbalgi Secretary AS Tainiun Hai Haukiba Senba Sahida Mai Tampam Sangsingi Akoibada Laiba Tobacco Free Zone Da Athingba Si Thogaiba Miyoi Samri Rom Phaing Dauki Haujik Sanabagi Pau Khangembam James Dagi
3: Literary and Sporting Organization Sinduna Pangthok Liba Kuntaruk Suba Aramam Somendra Ningsing Kumon League Kam Knockout Kendra Wise Kang Tournament King Asi Sanakiba Match Ta Maramba Hyanglam Kendrana Bhagavati Wabagai Kendra Bu Panjil Tarama Pantare Tathoikre Mari Suba MNCA Men's Under 19 One Day Trophy King Asi Sanakiba League Match Ta Rule Maitramna YUCC Kwakaitel Moirang Purelbu Wicket Tareta Thoikre Atopa match amada CDCC Sagolban Salam Lekaina SCCC Bu Run Champaga Nifutareta Thoikre Amadi PTRC Pachoi Patforna Al Amin Lilongbu Run Champaga Tarada Thoikre Bangkok Tangarang Lushin Kiba Kunithoi Suba Asian Under 20 Athletics Championship Ta Bharat Ki Sanaroina Sanagi Takamantara Yauna Takamantara Mapan Lorakpada Pradhan Mantri Narendra Modi na Thakatpa Phongdokre Social Media da Thakatpa Warol Amada Modi na Hai Mai Pakpa Asina Naha Oiriba Sanaroi Singh da Achouba Inot Amapire Tijamani
0: Aroibada Maroiba Pawamuk Manipur Gi Rajya Sabha Sit Amagi Mikal Pangthoknaba Notification Thokle Tha Asigi Tarani Panda Bo Thadana Gani Mukhyamantri Yumnam Khemsan Hairi Merite Yumpham Oiriga Thabak Lo Bahai Basi Sarkar Gi Khwaidigi Maroiba Thoksilni Sri Mukesh Singh Nangasi Degi Manipur Ki Director General of Police Oina Thabakpure Manipur Dangasi World No Tobacco Day Lisingani Kunturuk Pangthongna Ki Musung Pradhan Mantri Narendra Modi Ga Myanmar Gi Rashtrapati U Min Aung Hlaing Ga Ngasi Nai Delhi De Wari Sanakre Paul Isare
4: National Sports University Imphal Manipur gi admission haujeragani undergraduate kina Bachelor of Physical Education and Sports loinana BSc Sports Coaching in Archery Athletics Badminton Swimming Boxing Football Shooting Weightlifting Fencing amadi wushu postgraduate kina MSc Sports Psychology Master of Physical Education and Sports MSc Applied Sports Nutrition

0: आकाशवाणी इम्फाल हौसिक ताबे रसे सात्र सिंगबो एग्जाम की मतमदा सेनाबीबा यामना मरु ओय हाइबे हिरमसिदा खोंबान ताबम सुरज एडमिनिस्ट्रेटर करियर पॉइंट कोता इम्फाल गा उनदुना वरी साबा उनबिरिबा रंबा माइरिंबम स्कॉलर मणिपुर यूनिवर्सिटी थौरमसे कॉस्मोपॉलिटन कल्चर इंस्टीट्यूट बिसुमथोम ओइनाम लिकाई ब्रांच की तेंगमांग लुइनना पुतोकचबनी
1: अपोक्प इमा इपा नतना कना लेत्रे खनबसु लानगनी खनजे आइबु तकपिरिबा ओजा गुरु अदुसु इमा इपा कचप माने आइगी करियर दा सोइदनबा ngak सेमबिरिबा मखोइदुसु आइखोइना सेकंड गार्जियन नि हाइबदा हाइमन बथोक्लोय वफा मसिगा लोइनना पुदुना लाक्चरी सात्र सात्री सिंगबो एग्जाम नि मतम दा सेनबिबा यामनम मरु ओइ खनजेदुना करियर पॉइंट कोटा इम्पाल सेंटर हरांगोइ थोंगि एडमिनिस्ट्रेटर ओइने लेबिरिबा खोंबान ताबम सुरेश को उनदुना वरी साबा Awamasi Cosmopolitan Cultural Institute Bisumthong Oinam Lekai Branch ki tengbangaloinana puthok chaba thauramni Ausakse satra sing need exam loire haidina yum da pothaduna leiba matam oidurini adubu exam se mukhan gadaure masida exam thadungi marakshita पोतागी साइटगी साटर सिंगी दमकता करीब तान लेबी बगे हैबी की मतांगदा समलपना थंबियो
2: कोई करियर पॉइंट कोताना सो अंगांग सिंग सिगी हेना परफॉर्मेंस फनाबा हैबदी अंगांग सिंग सेंद से दाव याबा हैगे द्रा यारो दबा हैगे दबा हैब से अनिमक ने मिक्स फीलिंग ने तौरि से स्कोर याम तौ हिबा अंगांग सिंग दे डिपेंड जदबा हैबदी मोइना रिजल्ट आउट तौ द्रगसु आंसर की थोखि बनिना मोइदा मसागी स्टेन सिमा लई खंगजरा बनिना स्कोर वांग हिबा कांगबो अंगांग सिंग दे मोइदा अनफॉर्चूनेट ओरे हेने लोजा दोइनी अदुगा स्कोर खनेम हुबा कांगुनादि मोइदि एरियास ऑफ इंप्रूवमेंट फंगे हेने मोइदि हराउ जाबा अदुगु अखोइना करियर पॉइंट कोटा इम्फाल सेंटर सिना अखोइना सिंजरी से अंगांग सिंगसिदा मतम मांगनदबिदा अखोइ सिंग असिंग असिमा अखोइ पेरेंट्स कोरगा मीटिंग से तवगा अंगांग सिंगसिगि पेखासि कैंसिल तवरे हेने थो एको अदुगा मोइना रिशेड्यूल से तौद्रिबनिना तौद्रिङै मरकसिदा अंगांग सिंगसिदा हेना फोकस ओहेलगा अखोइ दिसिदा इसदा लेजरिसि वेल एक्सपीरियंस ओरबा सब्जेक्ट एक्सपर्टिस मियामा लैरबनिना मोइन हेने कुपथना हाइबदि हाउजि कैंसिल तौक्रिबसि अखमागि सिस्टम अमा सोइरबनिना मोइ हेने सु स्ट्रिक्ट ओइबगि चांसेस से लाक्तोइनि अदुना अखोइना करियर पॉइंट कोटा इम्फाल सेंटर से अखोदी अंगांग मैम की दमकता इम्फाल सेंटर दा लाक्पसिदा इम्फाल की अंगांग मैम दा नीट की एस्पायरिंग अब स्टूडेंट्स मैम कैंडिडेट्स मैम से अखोना कैटर टोजनिंग बनिना अखोगी करियर पॉइंट कोटा की स्टूडेंट्स सिंग दुदा नत्तबिदसु मणिपुर दा लैरिबा अंगांग सिंग सिगे मोदा एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट फंगबसिदा एडवांटेज से लौजरगा हयेंगदगी हेक्ता अखोसी मोगी दमकता क्लास से ओजा मैम सिन्ना ताकी तमिनबगी सेम साधना थमजरे हैबिदि अंगांग सिंग सिदा मैक्सिमम पीडीसी फैसिलिटीज से अखोना पूरा मोगीदमकता अखोई से डेडिकेट तौजरगे हैना डिसाइड तौजरे अखोई की मैनेजमेंट टीम नसु अदुगा अखोई फैकल्टी मेंबर में आमसु हाइबदि अंगांग सिंग से तुम होगत पगा यामगन सुन तबा आयु की पुंग तरे मखाय दगी हौरगा कोर्स की मतांग सिदा नैना हनबा हाइबदि मोइदा क्लास ओइना ताकबा नत्तबा क्रैश कोर्स की स्टाइल दी ओइरगा बट मोइदा प्रिसाइज ओइना मोइ मसाम सादुगी चटनबा से सी तौरगा अखोइना मु मोइदा 10 डेज मुसे अखोना ताहलगा मोइद नैना हलगा डाउट मैम से लेहेंद्र मतुंगदा मु मोइ एग्जाम अमु लौरगा मोइसे असेसमेंट अमु तौरगा मोइगी मसा मसा गी एरियास ऑफ इंप्रूवमेंट से लेनबगी दमगा तखोइना सिगी पांदमदा हेक्टर क्लास से हौनबाय नखोइना लेपसारे अदुगा पुंगतरे मखादगी खोइन होबोसिदा

आकाशवाणी इम्फाल हौसिक रेडियो बुनुगाइना ताबिरिबा मयाम गिदमक पुजेरली गुड इवनिंग मणिपुर थौरम मसी गिदमक आइखोय गि स्टुडियो गि टेलीफोन नंबर 9863102016 दा एसएमएस ताबिरक्तुना आदोम ताबिनिंगबा मणिपुरी फिल्म मदि मतामिशे खनबिरक्तुना थौरम मपुंग फानबियु हाइना निसिंसेरी

0: आकाशवाणी इम्फाल हौजिंग नुमिदांगी पुंगमापल तारे मणिपुरी दा पाव ताविरसी
1: आकाशवाणी इम्फाल
2: आई मनोज कुमार विद द न्यूज एट नाइन.
1: मणिपुर की राज्य सभा सीट अमा की मिखल पांगथोंगना नोटिफिकेशन थोगले मिखल से की रिटर्निंग ऑफिसर्स होरिबा मणिपुर विधानसभा की सेक्रेटरी रोहित सापम ने थोकपा सेरोलमन हाई मिखल से की मिरेप से था से की निपान फबदा रिटर्निंग ऑफिसर नतरगा असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर एल धनश्याम सिंह दा सोती ने तब नुमित सिंह की अयुक पुंग तरा माथोयदिगी नुथिल पुंग ओम फबदा पिसन बियागनी मथंग नुमित जून मापन मणिपुर विधानसभा की सेक्रेटरी स्क्रूटिनी पांथोकनी मिरेप से लौटोपगी अरब जून तरमाथोई था तरह निपान की अयुब पुंग मापन पुंग मरी फाव पोथादनगनी राज्य सभा की एम पी वरीब महाराज लैसेम सना जाऊबगी थबक पाइबगी मतम था कुमाथोई लोरगनी मुख्यमंत्री युमनाम खेमचान हायरी मेरी तयुफम होरेगा थाबक लोब हाइब से सरकार की ख्वाइदिगी मरोइब थौसलनी नसी मुख्यमंत्री की सेक्रेटरीता एमपीएससी की चेयरपर्सन एस एस साबराग उनरब तुंगदा सोशल मीडिया थगत पवरोलमद मुख्यमंत्री हाय पब्लिक सर्विस ता मतिक साब कैंडिडेट छिंग तबु खन्नबा अमक पलेतबा सेलेक्शन प्रोसेस अमल हेनबा असेट फिरेबलै सरकार की पांदमती तसेंग तसेंगना मेरी लेबा मियाम की सेवा तोबदा सेंजा थुमजा तौरोइदबमदि पुक्सेल सेंग ब कैंडिडेट छिंग खनबनी मसीना सरकार की थबक थोरम सिंग निथीना मसुंग नियम सुमना पांगथोपदा साउना मतेंग ओइगनी हाइनसु महांगना फोंदोखे श्री मुकेश सिंहना ngasidagi मणिपुर की डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होइना थबक पुरे महांगना मंत्री पुखरीदा लैबा पुलिस हेडक्वार्टर्स दा थुंगलबदा मणिपुर पुलिस ना गार्ड ऑफ ऑनर पिदुने इकाई खुमनखे मुकेश सिंहना मणिपुर की डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होइना थबक पुबो हौखिबदा गृह मंत्री गोविंद दास कोंथौजमना नुंगाइबो फोंदोखले सोशल मीडिया दा थगत पवारोला मदद श्री गोविंद दास नहाई राइज असिबो

ဆယ်ဘာတောင်းနေပါမဆုံး rise စီကမြန်ဘူအဆွေအင်္ဂါမထုံတနပါမဟာငလေလောက်ဒီပတိုင်ကျစီမပုန်ဖာနပန်းထောရကနီဟိုင်နသစေမဏိပူရဒ်စပက်ဆယ်အင်တန်ဆစ်ရီဗီဇန်ကမရီလီနာကခ ्सिंग ဇီလာကီဗီဒန်ဆဘာကန်ဒရမရီဝဘဂိုင်ကခ ्सिंग ဟီယန်လမမဆုံဆုဂနိုဂီအပွန်ဘပိုလင်းစတေးရှင်ဆာမဏိပူမ်ဒိုဂီဗော်တာဆင်ဂီယုံယုံဒါဘုတ်လေဗယ်အော်ဖီဆာဘီအယ်လိုဆင်နာစံပဟိုရေတုံငန်တုံငန်ဘရာဇတီဒေါ်ဆင်နာခလပဘုတ်လေဗယ်အဇန်ဘီအယ်လေဆင်ဂလနီနာဘီအယ်လိုဆင်နာယုံယုံဒါစံဒူနာအီလက်တိုရယ်ရောလ်ဒါမင်ဟပ်ဆင်ဘလောက်ထောက်ပါအရန်အဝီဆမ်ဒုတ်ဆမ်ဇင်တောဘဂီသဘခေါစီစသရီမစီဂီဒရပ်အီလက်တိုရယ်ရောလ်မထန်ထာဂီမငါတဖုန်ကနီစီလာအဒုကီဒစ်ထရစ်အီလက်ရှင်အော်ဖီဆာအန်ဂျယ်လီနာရေနီတန်ဟိုင်အီလက်ထရယ်ရောလ်ဒါမင်ဟပ်ဆင်ဘလောက်ထောက်ပါမဒီအရန်အဝီဆမ်ဒုတ်ဆမ်ဇင်တောရီဘစီဒါဆင်နဘလေရဘဒီဟဲလ်ပလိုင်းနံဘာ1950နတရဂါI-974-130-476 ta telephone torpa yagani natraga district election officer ki office tar lag laga tanar pa yagani final electoral roll September 3 to phongani Kangpok pi zila ki oyna sub board level officer singna zila adugi vidhan sabha kendra sing Kangpok pi saikulamadi saito gi polling station singi BLO singna yum yum sangduna enumeration drive satha bhaure drive sida board level officer sam humudra tarugna magi polling station singi voter singi yum da sangduna ming hapsin balok tok pamasung semdok semjin gi thabak satha gani सरकार न हाइरी लेबा का सीधा पेट्रोल अम सुंग डीजल की स्टॉक मरंग काई ने लेरी नोंगसुम एशिया तो ओरिली बफे पे मधु का मरी लेने न नई दिल्ली दे पांगथो को मंत्री से के मिफम द सर्व यार दुना पेट्रोलियम अम सुंग नेचुरल गैस मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा हाई लेबा का सीकी तोंगान तोंगान ब पेट्रोल अम सुंग डीजल की रिटेल आउटलेट सिंग दा पेट्रोल अम सुंग डीजल मरंग काई ने यंथोक न बा भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनी सिंग ने अकल मथबक पाइखली सागथों गैस एलपीजी की स्टॉक की मतांग द पलतुना मांगना है हाउ की बनुमिर हुमनी असिदा एलपीजी गैस के दम कंज्यूमर कोती अमल लाकुन माथोइले बुकिंग तो रखी कंज्यूमर सिंग दे यंथो पकि सांग सुहारी बमत मसिदा कंज्यूमर कोती अमल लाकुन इथोइदा एलपीजी सिलेंडर सिंग यंथो तुना गैस यंथो पकि सांग साद मरबुद्रा मांगा यौरे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हायरी म्यांमार असे भारत की यामना मरुइबा युमलो न भले बा कमनी म्यांमार की राष्ट्रपति उमिंग ओंग लियांग राष्ट्रपति भवन दत्ताराम ने उलतुना श्रीमती मुर्मू हाई भारत अमसुंग म्यांमार लेबाग अनि असी हौकी बसही सा कयादगी कला संस्कृति सभ्यता अमसुंग अतै हिरम कयाद तेंगबांग पिनतुर लागली भारत के युमलो नरी बलेबाग असी आसियान लेबाग सिंग फौदोक फौजिन तौनली ब भारत की मरोई बथोंग मसोइरी म्यांमार की अनोब सरकार गा नकल अली की मरकता असेप मरी थमनदुना पुन थबक तोमिनबगी तंगाई पदबसो राष्ट्रपति ने फोंगतोखी पाउलोइसरे

ताविरे कोइने जतुना इसै खनबगी थौरम थौरम लानथोकपिकी पसिंगदी लोइटोंगबम रंजना अमदी लाइश्रम बिमो थौरम पुथोकपा नोंथोंबम रोमा

आकाशवाणी इम्फाल हौजिक पुंफम मसीदा लांथोक सरी तोंगान तोंगान व फिल्म दगी लकोट चबा मणिपुरी फिल्म शे खुदोल गी हान बदा अहिंग ब फुरा फिल्म मसीदगी नाउ बॉय अमदी अल्बिना गी अपुन ब खोंजलदा बबीना सलामना सैरेंग लिबा अमदी ओइनाम गीतना सैरांग बैशे उनिंगदुना तलैबा मपाउतबु तानिंगबा पाखंग लेशागी नुशी मसतनी महौशानी

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. यह कार्यक्रम है हर सिंगार, जिसे लेकर आज की रात मैं माधुरी हूं आप सभी के साथ. आज हमारे हिंदी सिनेमा के पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर जी हमें छोड़कर चली गई, लेकिन मैं हमेशा कहती हूं कि कलाकार दिनों और सालों में नहीं, युगों में जिया करता है. वो अपनी आवाज के माध्यम से हमेशा हमारे साथ रहेंगी. चलिए शुरुआत करते हैं उन्हीं के गीत के साथ.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक सुभमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निशित कुमार।
1: दिस इज आकाशवाणी। In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, key welfare schemes and their grassroots impact. Participants are Shubhamoy Bhattacharji, economic analyst, and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator is Nishit Kumar.
2: Over the last 12 years, Prime Minister Narendra Modi-led central government has completely shifted India's welfare narrative from entitlement-based support to empowerment-focused, targeted delivery. This new ecosystem replaces the leaking paper-heavy systems with a tech-driven pipeline pushing benefits straight to the rural and urban poor. And to discuss more about it today, we are joined in by senior economic analyst Shubhamoy Bhattacharji and senior journalist Aditi Tandon. Welcome to both of you to the studios.
3: Thank you.
2: Aditi, I would like to begin with you. We know there have been a plethora of schemes and other things which the central government over the past 12 years has brought to the common man, especially the rural folk as well as the urban poor. Now, if we start with the JAM scheme, the JAM Trinity, which is a no-leak ecosystem, and the Janadhan Yojana, which was launched in 2014, it's been 16 years almost now, that created almost over 50 crore zero balance bank accounts, so on and so forth, which eliminated the middleman. And of course, the financial inclusion for the women cannot be overstated. Now, how do you see this JAM Trinity actually working?
3: See, like you said, the priorities of the government were laid down and actually fixed very early in the day. After Prime Minister assumed charge in 2014, we recall that among the first statements that he had made is that his government will be dedicated to the welfare of the poor. So we have since then followed the policy intent closely, and we have now seen that a number of government schemes are basically aimed at three large objectives, wherein also the Jandhan Yojana of the government fits in. These three large objectives basically are not only to lift people out of poverty, but then to keep people moving upward. The upward mobility insofar as income generation is concerned is very important, because otherwise what's going to happen, you're going to pull somebody out of poverty, they're going to fall back in. So for that to happen, you needed basically what is called the backbone of the larger pro-welfare landscape. The Jan Dhan Trinity, where we talk about the accounts through the mobile phones, yes, and the Aadhaar identification. Yes. So you have the JAM Trinity. So you have the Jan Dhan account, which you just mentioned. Zero balance accounts were allowed to be opened for a lot of rural poor, urban poor also. I think that number has now crossed 58 crore. And what is important is that 57% of these accounts are in the names of women of the household. So you now have zero bank balance accounts where people have started depositing money. They have started receiving DBT, direct benefit transfer of various government schemes. Also, if there are any pensions, if there are any credits, deposits, everything is coming into that account. Secondly, that you mentioned, in the JAM Trinity, you have the Aadhaar identification. The Aadhaar landscape is now largely comprehensive. A number of people have been covered. And then the mobile. So through mobile, you are pushing the financial inclusion part of this whole JAM Trinity. So you now basically have the backbone of the welfare structure that the government conceives. And through this financial inclusion backbone system, you have a pool of beneficiaries who are able to directly and easily and smoothly benefit from government schemes. See, government was helping the poor earlier also, but we all know that there was a large loophole existing in the system. Money was being sent to some account, it was reaching some other account, there were ghost beneficiaries. Sure. What JAM Trinity has done is it has helped weed out all these ghost beneficiaries. Money is assured to the beneficiary now through Aadhaar and the mobile identification. And that is what is now making a difference.
2: Absolutely. Aditi, you mentioned about the plugging of the leakage, the pilferage, which was happening earlier on before this JAM Trinity came into effect. Yeah, Shubhamoy, one cannot actually ignore the the government scheme specially directed at the women folk, especially when we talk of the BPL households and the rural folk. Now, PM Ujjwala Yojana is one such scheme which has really revolutionized, you know, if you can say, you know, the healthcare, the upliftment of the healthcare of the rural women. Now, how do you see this PM Ujjwala Yojana actually, you know, benefiting the rural women?
4: That's a very interesting thing that you've asked. And frankly speaking, when PM Ujjwala, which is basically supply of LPG cylinders to the places which were earlier using only firewood, so rural areas, semi-rural areas, you know, those sort of areas. Now, when we get this phenomena, the first thing that happened is that not only did the cylinders reach, but authorities were pleasantly surprised by what is called the incidental benefit, which is that there was a sharp reduction in bronchial problems of women. So basically, in any village household, the big problem was the kitchen would typically be highly smoke-laden. And from there, a clean fuel was doing a substantial change in the health conditions of the people, of the women. Now, this was studies that was done by independent agencies, and frankly, it was something that wasn't even thought of initially as how significantly it will change the needle in terms of the health benefits. So this is surprisingly useful and a surprisingly refreshing add-on of the PM Ujjwala scheme, because Ujjwala did its primary role, which was that it ensured that a steady supply of fuel reached the households. This immediately not only did, I mean, while the health benefits, as I said, came along and caught everybody pleasantly surprised, the larger, the basic thing that it was supposed to do was to cut down the time that women spent collecting firewood, getting cow dung, and so on and so forth. In fact, the third benefit that had happened was it released a lot of manure for use in what is called the biofuel changes, which has actually now become a very significant add-on. So there's been a lot of what we should say cascading impact of the Ujjwala benefit. As you would have noticed, that what has happened is that this has also led to a very strong financial security in those households. So together, it has been a very impressive package of reforms that have been delivered, impressive package of benefits that have been delivered. Yes.
2: Yeah, absolutely, Shubham. Aditi, Shubham abhi baat kar rahe the, kis tarah se ye BPL household ko khas karke Ujjwala Yojana ne benefit pahunchaya hai rural women folk ko khas karke. उन्होंने चर्चा की कि किस तरह से स्मोक लेडन हमारा किचन हुआ करता था और सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज अगर हम बात करें वो है जल जीवन मिशन का. टैप वाटर ये एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे खास करके भारत देश में सीजनल रेन्स एंड ऑल यू नो एंड वाटर बोर्न डिजीजेस ये बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता था. जल जीवन मिशन एक ऐसा एक स्कीम मतलब ये लेकर आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जहां पर कि हर घर नल योजना की शुरुआत की गई. कैसे देखते हैं आप, खास करके अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ को प्रायोरिटी देने की बात करें तो?
3: ये बहुत एक महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, जिसके तहत सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है एक हाउसहोल्ड की महिला को, क्योंकि हम जानते हैं कि इतने साल हो गए हमारी इंडिपेंडेंस को, लेकिन फिर भी अभी भी इतने सारे हाउसहोल्ड्स ऐसे थे रूरल एरियाज में. ये रूरल हाउसहोल्ड्स को जोड़ने की स्कीम है ज्यादातर, और इतने सारे हाउसहोल्ड्स थे कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते थे, पढ़ते थे. आज तक ऐसी खबरें छप रही थी कि 8-8, 9-9 घंटे तक लोगों को चल के जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, या बहुत किलोमीटर्स का सफर तय करके दूर दराज इलाकों में लोगों को जाना पड़ता है. जो हिली टेरेन्स हैं उसमें पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी. जो डेजर्ट एरियाज हैं खासकर जैसलमेर, राजस्थान और गुजरात, कच्छ के साइड में बहुत सारे ऐसे हमें एविडेंस मिलते थे कि जहाँ पानी की समस्या इतने साल बाद भी आज़ादी के, मतलब ये एक किसी भी देश के लिए कोई अच्छी कन्वीनियंट स्थिति नहीं है, कन्वीनियंट पिक्चर नहीं है कि आप एक बेसिक सुविधा, जैसे आप पावर की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए, या पानी की बात कर लीजिए, टॉयलेट्स की बात कर लीजिए, ये बड़ी बेसिक चीजें हैं जो आम तौर पर अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से जो नहीं हो पाई. और आपने सही कहा कि अगर आप स्वास्थ्य लाभ भी देखें इस योजना से तो बहुत ज्यादा लाभ होता है, और इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, बहुत लोगों ने बहुत सारे रिसर्च और एविडेंस बेस्ड पेपर्स भी निकाले हैं, जिससे ये भी कहा है कि इससे जल जीवन मिशन की वजह से बीमारियों में बहुत कमी आ रही है. child health indicators improve ho rahe hain, mahilaon ki swasthya sthiti improve ho rahi hai aur sabse important garbhavati mahila ke liye ye ek boon ki tarah aaya hai kyunki bahut sari waterborne diseases garbhavati mahila ko gande pani ki wajah se bahut kuch sehna padta tha aur jal jeevan mission se kya hua hai na sirf pe jal ghar tak gaya hai balki bahut sari मतलब प्रोडक्टिव टाइम जो महिला का पानी इकट्ठा करने में जाता था वो अब और चीजों में वो व्यस्त हो सकती है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर बन सकती है वो लखपति दीदी योजना का लाभ उठा सकती जी, है क्योंकि उसके पास अब वक्त है घर में पानी आ रहा है ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है
5: जी,
3: लेकिन
5: जी,
3: बहुत बड़ा प्रभावी कदम है
5: जी जी जी अदिति और इसी क्रम में हम आगे बढ़े शुभ में सैनिटेशन की अगर बात करें स्वच्छ भारत मिशन ये एक फ्लैगशिप मिशन जिसे कहें और जब भी इसे इंप्लीमेंट किया गया था उसके पहले शायद पता नहीं इस तरह की योजना कभी सुनने को नहीं मिली थी सैनिटेशन की बात करें स्वच्छ भारत मिशन जिसे ओपन डेफिकेशन एलिमिनेट ऑलमोस्ट कर दिया गया मास कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसहोल्ड एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स ये कोई छोटी बात नहीं है शुभ में क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में
4: हाँ ये वाला चीज जो आप देखेंगे
5: जी
4: कि पानी का सप्लाई स्वच्छ भारत मिशन इन सभी चीजों से जो बदलाव अभी दिख रहा है वो है काफी सिग्निफिकेंट आप इसके पहले एक आम बात थी कि बहुत सारी जगहों पे ओपन डिफिकेशन और उससे चलते जितने सारे तरह की बीमारियां उनका खासकर मॉनसून में फैल जाना बाकी समय में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये सब चीजें एक आम सरफ चीज था कि भाई होता है क्या किया जाए इसमें जो अभी जो नेशनल हेल्थ सर्वे के जब डेटा देखेंगे तो सबसे बड़ी बदलाव आप उस डेटा से देख सकते हैं कि ये एक से कहते हैं आपका एक मेजरमेंट आ गया है कि कितना और कितना प्रभावी ये सारे बदलाव हुए हैं अभी आप मैं आग्रह करूंगा कि कोई आकाशवाणी के जो लिसनर्स हैं कभी अगर वो ट्रेन का सफर करे दूर दराज के रास्ते में चलते हुए एक जो कॉमन साइट था ओपन डेफिकेशन का वो करीब एकदम वैनिश हो गया और ये बहुत ही बड़ा बदलाव है इसमें टाइम लगा इसमें करने में शुरुआत में बहुत सारे हिचक आए बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस करने पड़े लोगों को बहुत सारे हिदायतों के साथ साथ बहुत सारे आग्रह का भी इंटरेस्ट चीजें दिया गया इधर उधर की जिसे कहते हैं शॉर्टकमिंग्स भी आई लेकिन इतने साल के बाद अब जाके उनका इफेक्ट लोगों के जिंदगी के ऊपर अभी दिख रहा है और ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज इसलिए है कि ये एक तरफ एक सिविक चेंज आ गया है हमारे देश में बहुत सारे इलाकों में अब जिन सारी चीजों की बात करें जैसे ओपन डेफिकेशन स्वच्छ भारत मिशन जल जीवन के साथ उज्ज्वला या उसके पहले जब जैम ट्रिनिटी इन सब के चलते लोगों में जो एक नया वार्तालाप का एक सिस्टम आ गया एक नया जैसे कहते हैं आइडियाज का एक कॉम्बिनेशन बन गया है कि ये सारी चीजें तो जिंदगी में होनी चाहिए इनका ना होना ही आज आश्चर्य की बात लगता है बहुत काफी जगहों पे ये जिसे कहते हैं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट एक बहुत बड़ा चीज है डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा चीज है लोगों में अपना भरोसा बनाने के लिए अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कि हम इससे आगे चल सकते हैं ये सारी चीजों के लिए हमें डेली का जो लड़ाई है वो जूझना नहीं पड़ेगा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये सब हमारे लिए ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी

0: when we talk of the rural people and the urban poor as well, rather across the spectrum. Now, PMAY, both rural and urban, how do you see this kind of revolutionizing, especially when we talk of PMAY Urban 2 also now launched, 2.0 also now launched. Now, this is something which is really phenomenal.
1: Yeah, I think like we discussed earlier, you know, the overall policy impetus of the government is basically to create a landscape where the poor not only come out of poverty, but they have a means of dignified living. For dignified living, housing is very important. You know, people are being helped to get access to affordable housing. Like you said, Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen is particularly remarkable in the scale that it seeks to achieve. If you look at the sheer numbers, I think Grameen Yojana targets around 5 crore houses by the year 2029. And so far, the data suggests that almost, 3.90 crore houses have been sanctioned and nearly 3 crore have actually been completed and are being distributed through the state system. What is even more important is that these houses are going to people who do not own any immovable assets, like who do not own any property or any land or any house at all. And the system also now is artificial intelligence driven. There are a number of monitoring tools that have been deployed to ensure that the anomalies get detected in time, that only the very genuine beneficiaries get houses, and there's Aadhaar face authentication happening. And what is most important is geotagging of the structures is happening, structures that are being created. Everything is digitally driven. So what is important also is that there is seamless coverage being provided to the beneficiaries of PM Awas Yojana with other schemes of the government. Whoever comes into the system of PM Awas Yojana will automatically get linked to Swachh Bharat Mission, Grameen, Jal Jeevan Mission, Ujjwala Yojana, Surya Ghar Mission and Muft Bijli Yojana.
0: Correct.
1: So there's a seamless coordination and integration of the government system. All that has happened only because of the digital platforms that have been created for the purposes. There are portals where people can apply. Aadhaar is already there, like we discussed, the Jam Trinity
0: is there. Yes.
1: So everything is in place and now the foundation has been laid and now building blocks are being created.
0: True. Shubha, agar hum baat kare Pradhan Mantri ye Mudra Yojana ki, Mudra Yojana ek aisi yojana hai jahan ki humne dekha hai ki lagbhag abhi tak 57 crore se jyada लोन ये डिसबर्स किए जा चुके हैं और ये खास करके महिलाओं के लिए एक बहुत बहुत ही बड़ा एक सहारे का काम कर रहा है, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका दे रहा है. वी ऑल नो दैट नो कंट्री, नो इकोनॉमी और नो सोसाइटी रादर कैन यू नो एडवांस विदाउट टेकिंग इनटू द लूप द अदर 50% ऑफ द पॉपुलेशन. नाउ मुद्रा योजना, जैसा कि हमने अभी चर्चा की, 57 करोड़ प्लस लोन अभी तक डिसबर्स किया है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सिग्निफिकेंट है, खास करके महिलाओं के लिए अगर हम बात करें.
2: द इफेक्ट दैट इज हैपनिंग इज यू नो अगेन समथिंग व्हिच इज समथिंग व्हिच वी डिडंट एक्सपेक्ट अर्लियर. सो द वे टू पुट इट इन इज दैट दिस इज समथिंग, दिस वाज समथिंग दैट वाज एक्सपेक्टेड अगेन टू हैपन एट अ लेटर लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी. दैट has begun to happen now. Why? Because Mudra Yojana essentially says that somebody who is able to take a loan for self or for entrepreneurship should have the financial literacy to be able to carry that sort of a enterprise. Now, typically, somebody who's poor and who's doing an enterprise because she or he has been forced to do it is different from somebody who's doing a financial enterprise out of sheer, out of because he wants or she wants to do it. There's a difference. That difference, Posh, because of the fact that an ecosystem of support, partially again through the Jam Trinity, has come in where people are confident that they can run a financial enterprise seamlessly. You know, because otherwise, what has been happening is that there are several types of interventions to create entrepreneurship which had been tried, which had not worked primarily because people lacked the confidence that whether the back end of an enterprise will be something that they can sustain. It's actually a very big thing because unlike a salaried person who gets some money at the end of the month, does the work and is all assured and comfortable that you'll get a salary. And so that's about it. Here a person is daily selling his wares, services, manufactured products, whatever it is, and earning income and keeping a track of it. And then also being able to sustain it and being able to pay repay loans. And then, because the Mudra loan, as you can see, is of three stages. Shishu, then Kishore, and then Tarun. So there are three stages in which so you graduate from one to another. To be able to do that sort of a thing, you need a considerable amount of financial, what I should say, architecture in place. And that is a very interesting innovation that has been created. Obviously, compared to, say, Ujwala or Sakshatkar Mission or missions like the Swachh Bharat Mission, this is relatively more recent. So it'll start showing its effect later. But already you can see from the PLFS survey, the Periodic Labor Force survey, that about 50% of Indians are now reporting self-employment. And that self-employment is not distress employment. It is employment, self-employment that is being made possible for a large number percentage of them because they are confident that they can take on these enterprises and can take on capacity building, capacity, I mean, expansion of their products and services, which wasn't possible earlier. How it will pan out is a very big thing. Remember, we are talking about a population base, which is the largest population base in the world. To be able to create self-employment in that sort of a large population, with being able to support themselves, being able to support their families, being able to carry on the business for long length of time, not being drawn into the race for getting a job. Here, there we are talking of plenty of changes, which is not very easy to think of as just, you know, suddenly that we've done it and it's one-time support. It's not a one-time support. It's something which is actually a result of series of interventions, which brings a scheme like Mudra into being a success that it is being envisaged.
0: Shubh, I self-employment ki baat ki, Stand-Up India scheme bhi ek aisi scheme hai, jiske tahat 15,000 प्लस करोड़ लोन अभी तक डिसबर्स किए जा चुके हैं इस बारे में भी थोड़ा हमें बताएं और पीएम स्वनिधि योजना जो कि एक बहुत ही जिसे कह सकते हैं एक फ्लैगशिप स्कीम जिसे कहते हैं ये भी एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को ये लाभान्वित कर रहा है कैसे देखते हैं आप इसे
1: देखिए ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है ये एक बहुत कॉन्सिक्वेंशियल रिफॉर्म है वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे याद है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ साथ ही इसका आरंभ किया गया था कोविड-19 के दौरान जून 2020 में ये शुरू की गई थी उस वक्त मंशा ये थी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो बहुत बुरी तरीके से हिट हुए थे जिनकी वजह से हम और आप कोविड से लड़ पाए थे क्योंकि वो सब्जी बेच रहे थे वो वेयर्स बेच रहे थे तो हम उसको खरीद रहे थे
0: इवन अगर गिग वर्कर्स की बात करें
1: बिल्कुल गिग वर्कर्स की भी स्वनिधि में वो भी काफी हद तक कवर होते हैं तो उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी कि बेसिकली आइडिया था कि वर्किंग कैपिटल जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको दी जा सके ताकि वो ऐसा ना हो कि कोविड-19 की वजह से बिल्कुल ही त्रस्त हो जाएं तो तब से इतनी इंपॉर्टेंट बन गई स्कीम और इसका लाभ इतना दिखाई देने लगा फाइनेंशियल सिस्टम में कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिग्निटी मिली फाइनेंशियल इंक्लूजन मिला सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्किंग कैपिटल हाथ में है तो आप 10 तरीके की चीजें कर सकते हैं तो अब क्या किया गया है हाल ही में 2025 में यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को रीस्ट्रक्चर भी किया है और लोन देने की जो अवधि है वो 2030 तक बढ़ा दी गई है और ना सिर्फ ये किया गया है तीन लेवल्स पर लोन दिया जा रहा है स्वनिधि में स्ट्रीट वेंडर्स को पहले लेवल पर आप ये 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है वैसे ही दूसरे लेवल पे 20 से 25,000 कर दिया गया है और फाइनल लेवल जो है वो 50,000 है और इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है उन लोगों को जो टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं प्लस एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस स्कीम का बिंदु है वो ये है कि अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन ज्यादा से ज्यादा कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में आपको कैशबैक इंसेंटिव भी दे रही है ये स्कीम तो अभी तक अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पूरे देश में हैं जो इसमें लाभान्वित हो चुके हैं और करीब 17,000 करोड़ तक का जो लोन है वो दिया जा चुका है 122 लाख लोन्स दिए जा चुके हैं करीब 17,000 करोड़ के
0: राइट आदिति लेट्स टॉक द वुमेन फोक लखपति दीदी अभियान ये लगभग 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं बन चुकी हैं लखपति दीदी और 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी है कुछ बताएं इसके बारे में
1: जी ये एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की और किसान सम्मान निधि की जो बात हुई उसमें बस छोटी सी एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि जब ये अमाउंट तय हो रहा था तब एक स्टडी करवाई गई थी कि फार्मर्स का कॉस्ट इनपुट क्या है उनकी कॉस्ट कवर करने का ये कवायद है जो 6000 की रकम तय की गई है ऐसा पाया गया कि अगर ये दे दी जाए तो

0: लीस्ट उनका जो इनपुट है वो कवर हो जाएगा इस वजह से ये 6000 पे तय हुई थी पर अब जो महिलाओं की आप बात कर रहे हैं महिलाओं को क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बहुत सारे वक्तव्यों में ये कहा है कि विकसित भारत के चार स्तंभ होंगे जिसमें से पहले हम चर्चा कर चुके हैं गरीबों की उसके बाद हम चर्चा कर चुके किसानों की तीसरा यूथ आपने स्टैंड अप इंडिया की बात की और अब चौथी आप बात कर रहे हैं महिलाओं की ये चार स्तंभ हैं जब तक आप इनको फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करते तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप विकसित भारत के गोल को अचीव कर पाएं जिसकी वजह से ये हुआ है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की मूवमेंट इस देश में चल रही है करीब 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस वक्त कार्यरत हैं उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं जो भाग ले रही हैं लखपति दीदी योजना उसके तहत ये कोशिश कर रही है कि हर महिला एक साल में 1,00,000 रुपए अपने बलबूते पर कमा सके उसमें तरीके तरीके के प्रावधान किए गए हैं जैसे ड्रोन दीदी का प्रोग्राम भी उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है कुछ महिलाएं ड्रोन दीदी प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेकर खेतों में ड्रोन के माध्यम से मतलब पेस्टिसाइड्स छिड़काव कर रही हैं या और बहुत चीजें कर रही हैं सिमिलरली कुछ लोगों को आप हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व कर रहे हैं इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है फिशरीज में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं महिलाओं को उनका फाइनेंशियल जो इक्वेशन है फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है उसको बढ़ाने की कवायद है और एक चीज की वर्ल्ड बैंक की अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी जिसको हम जिनी इंडेक्स के नाम से जानते हैं वो देशों को मापती है इस माध्यम से कि कितनी इक्वल सोसाइटीज हैं और जो फ्रूट्स ऑफ पावर हैं वो कितनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लोगों में ये जितना कम होता है इसका वैल्यू उतना एक सोसाइटी को इक्वल माना जाता है तो वहां मैं पढ़ रही थी कि भारत का जो वैल्यू है जिनी इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक की वो 25.5 है और चाइना का 35.7 है और यूएस का 41.8 है कहने का मतलब है कि ये जो सरकार ने एक लैंडस्केप तैयार किया है वेलफेयरिज्म का इससे ये प्रूव हो रहा है और ये थर्ड पार्टी ऑडिट है दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक ये हम और आप नहीं कह रहे हैं या सरकारें नहीं कह रही हैं यहाँ बैठकर ये एक थर्ड पार्टी ऑडिट एक इम्पोर्टेंट एजेंसी कह रही है कि भारत में अब धीरे धीरे वेलफेयर बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं और जैसा आपने अपने वक्तव्य में कुछ देर पहले कहा कि एक्सट्रीम पावर्टी जिसका मेजर क्या है उसका मेजर है कि $3 से कम पर प्रतिदिन कितने लोग इस देश में रहते हैं उसकी जो संख्या है वो 16.2% 2011-12 में थी और अब घटके 5.3% रह गई है तो धीरे धीरे एविडेंस क्रिएट हो रही है इसी वजह से बहुत सारी एजेंसीज जो सरकारी ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी अपने एविडेंस बेस्ड पेपर्स में ये कह रही है कि भारत अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां उसको विकसित भारत बनने के लिए जो मैकेनिज्म्स चाहिए थे वो इन प्लेस हैं विकसित भारत का क्या मतलब है विकसित भारत का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है हमने अपनी अभी हम लो मिडिल इनकम कंट्री के कैटेगरी में हैं हमें हाई इनकम कंट्री बनना है 2047 तक वो बनने के लिए चर्चा की है आपने जिन तबकों की उनको आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली इंक्लूसिव बनाना है उनको एम्पावर
1: करना है राइट राइट थैंक यू सो वेरी मच शोमा आदित्य बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग जॉइंड अस एंड शेयर्ड योर व्यूज ऑन द टॉपिक थैंक यू सो वेरी मच
0: थैंक यू
2: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सुभमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल News on AIR Official पर भी सुन सकते हैं इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं ईमेल का पता है AIR@nsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044
3: In the special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government. Key welfare schemes and their grassroots impact. Participants were Shubhamoy Bhattacharji, economic analyst, and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Nishit Kumar. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और ये सफर है गीत मेरे मन में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं सदाबहार गाने आज मैं हूं आपके साथ माधुरी तो सुनिए सदाबहार गाने बिना रुके

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: Both sides underscored the
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कल नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका की लघु व्यवसाय विकास मंत्री स्टेला टेम्बिसा नडाबेनी के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों के बीच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि ये मंत्री सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और निशिगंधा में आज पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है सौदागर।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आज हम बात करेंगे रात की। जी हाँ, रात जैसे जैसे ढलती जाती है और धीमी हवा में जब खामोशी उतरती है तो लगता है जैसे समय ठहर गया हो। हर सांस में एक अनकही दास्तां छिपी होती है और हर धड़कन किसी अनजाने अदृश्य संगीत से जुड़ी होती है। और यही वो पल होता है जब मन खुद से बातें करने लगता है। बाहर की हलचल थम जाती है और भीतर की आवाजें खुद को बहुत साफ साफ सुनाई देने लगती है। और यही वो क्षण होता है जब हर इंसान अपने सबसे करीब होता है, खुद को महसूस कर सकता है, खुद को समझने की कोशिश करता है और जीवन से जुड़ी सच्चाई को बहुत करीब से जान लेता है। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में और फिल्म का नाम है प्रेम पर्वत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। नौ दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं साथ में जयति। और अगला गीत सुमन कल्याणपुर की आवाज में और मुकेश की आवाज में, फिल्म का नाम है मेरी सूरत तेरी आंखें।

ये जो रात की खामोशी होती है ना, जिसे हम कभी कभी कहते कहते अकेलेपन का नाम देते हैं, डर का नाम देते हैं, भय का नाम देते हैं, तो कभी कभी ये रात की खामोशी, ये सन्नाटा हमारे लिए एक सुंदर साथ भी बन जाता है। उसकी गोद में बैठकर हम अपने दुखों को गिनते हैं, अपनी तकलीफों को गिनते हैं, अपने संघर्षों को गिनते हैं, और फिर पाते हैं कि हर संघर्ष के पीछे, हर दुख के पीछे, हर तकलीफ के पीछे एक सीख छिपी होती है। हर आंसू किसी अनकहे साहस की कहानी होती है, और यही खामोशी हमें मजबूत करती जाती है। हम समझते हैं कि टूटना किसी भी कहानी का अंत नहीं होता, बल्कि हर टूटन से एक नई शुरुआत होती है, एक नई कहानी रची जाती है। ठीक वैसे ही जैसे अंधेरे के बाद ही उजाले का जन्म होता है, और हर थकान के बाद एक सुकून भरी नींद आती है, और यही हम सबके जीवन का सबसे खूबसूरत सीक्रेट है, सबसे सुंदर रहस्य है, और हम इसे समझना भूल जाते हैं। वो कहते हैं ना कि न तुझसे गरज है न सूरत से तेरी, मुसव्विर की हम तो कलम देखते हैं, मुसव्विर की हम तो कलम देखते हैं। जिंदगी की परिभाषा जिन शब्दों में लिखना चाहें उस शब्द में लिख सकते हैं, जिंदगी ठीक वैसे ही नजर आने लगेगी। पर लिखते वक्त में हमेशा याद रखें कि कहानी चाहे जैसी भी रही हो, कहानी का अंत कैसा बनाना है ये सब कुछ हम पर निर्भर करता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर निशिगंधा, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। अगला गीत फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी, आवाज है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। अभी छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है नगीना, आवाज है अनुराधा पौडवाल की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मिलते हैं 1:10 पर।

0: fare.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने नई दिल्ली में स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 के बारे में लोगों को जानकारी देना है। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि ये मंत्री सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के एक हिस्से के ढहने की घटना की जांच के लिए 2 अलग-अलग उच्च स्तरीय जांच समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। हमीरपुर के जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच समिति की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष को कम करने पर सहमति बन गई है। यह समझौता इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत और मध्यस्थों के माध्यम से हिजबुल्ला से संपर्क के बाद सामने आया। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफानी मौसम की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renuka.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयति। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में जो पहला गीत आपको हम सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है मेरे सनम, आवाज है मोहम्मद रफी की।

रात का ये शांत पहर, धीरे धीरे बहती हवा, जैसे कोई पुराना गीत गुनगुना रही हो, उसमें यादों की खुशबू घुली होती है। कभी बचपन की हंसी, कभी जवानी की बेचैनी और कभी बुढ़ापे की थकान। हर सांस में एक कहानी छिपी होती है कहीं ना कहीं, जो हमें बताती है कि जीवन केवल जीने का नाम नहीं बल्कि महसूस करके जीने का नाम है। जीवन में जितने भी पल गुजर रहे हैं ना, उन सबको महसूस करते जाइए। हर कहानी के पीछे हर पल एक नई सीख देकर जाता है। जरूरत होती है उसे दिल से महसूस करने की। और अगला गीत, फिल्म का नाम है जुर्म, आवाज है कुमार शानू और साधना सरगम की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयति। गीत सुहाने में जो अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है शागिर्द और आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने और साथ हूं मैं जयती। कहते हैं कि जब सब कुछ शांत हो जाता है तब अगर कुछ सुनाई देता है तो वो होती है दिल की आवाज, और ये दिल की आवाज सन्नाटे में सबसे तेज सबसे ऊंची सुनाई देती है, और वो सुनाई देकर उसकी धक धक धक धक धक धक हमें याद दिलाती है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है, हम क्या कर रहे हैं। ये जो सब कुछ होता है ना, ये हमारा खुद के साथ संवाद होता है, और ये संवाद दुनिया का सबसे बेहतरीन संवाद होता है। जब हम अकेले में खामोशी में खुद से बातें करते हैं, और यही संवाद जब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाना है, हमें क्या करना है, हमारी मंजिल कहां है, तो वो हमें भीतर से रोशन कर देता है, बताता है कि सच्चा सुख जो है वो बाहर नहीं है बल्कि भीतर की शांति में है। यही वो पल होता है जब हम खुद को पाना सीखने लग जाते हैं, खुद से बातें करना सीखने लग जाते हैं, और इसी क्रम में हमें पता चलता है कि हमारी मंजिल कहां बैठकर हमारा इंतजार कर रही है। अगला गीत फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी, आवाज है मोहम्मद रफी की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती. और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार. हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर. कार्यक्रम होगा रात सुरमई. छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ. आवाज है मुकेश और लता मंगेशकर की. आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर.

0: अंडरस्कोर दी
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर.एन. रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया। महाराष्ट्र विधान परिषद की 17 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया कल संपन्न हुई। सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने सभी 17 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर, शिवसेना 4 सीटों पर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी एमवीए ने कांग्रेस को 8 सीटें, शिवसेना यूबीटी को 6 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार को 3 सीटें आवंटित की हैं। मतदान और मतगणना दोनों 22 जून को होंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष को कम करने पर सहमति बन गई है। ये समझौता इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत और मध्यस्थियों के माध्यम से हिजबुल्ला से संपर्क के बाद सामने आया है। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफानी मौसम की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Min Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi yesterday. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयति। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और रात सुरमई में जो आज आप पहला गीत सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है अभिमान। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कभी कभी लगता है कि तन्हाई बिल्कुल एक दर्पण की जैसी होती है। तन्हाई में बैठकर हम अपना असली चेहरा देखते हैं, अपने व्यक्तित्व को जानते हैं, पहचानते हैं, और हमारा सामना हमारे उस व्यक्तित्व से होता है जो हम दुनिया को नहीं दिखाते, जिसमें हमारी कमजोरी होती है, हमारा डर होता है और हमारी ताकत भी होती है। और यही तन्हाई, यही अकेलापन हमें सिखाता है कि अगर हम किसी भय के कारण, किसी डर के कारण, किसी कमजोरी के कारण अगर खुद से भाग रहे हैं तो भागना संभव नहीं है। खुद को अपना लेना, चाहे हम जैसे भी हैं, हम अच्छे हैं, ये सबसे बड़ा साहस है। और यही साहस हमें आगे बढ़ाता है और हमारे जीवन को अर्थ देता है, हौसला देता है। तो खुद को अपनाना सीखिए। हम जो हैं, हम इस दुनिया का सबसे बेहतर क्रिएचर हैं, भगवान के द्वारा बनाए गए। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग
1: कभी सुनहरी यादें कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है बॉर्डर, आवाज है सोनू निगम और अलका याग्निक की।

किसी ने कहा कि यादें अक्सर आती हैं और चुपचाप लौट जाती हैं, पर यादें जो होती हैं ना, वो चुपचाप लौटती हैं या नहीं लौटती हैं, ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक अनुभव होता है। पर यादें हमें उन पलों में ले जाती हैं जहां हंसी थी और हंसी के साथ थोड़े से आंसू भी थे, पर अनगिनत अधूरी बातें थीं। यादों ने ही सिखाया कि हर याद एक पुल का काम करती है जो हमें अतीत से जोड़ती है, और ये पुल अतीत से जोड़कर हमें सुकून देता है, पर कभी कभी वो हमें थोड़ा बेचैन भी कर देता है। लेकिन हर याद हमें ये सिखा कर जाती है कि बीता हुआ समय हमारे भीतर जीवित रहकर हमें जीवंतता प्रदान करता रहता है। आप सुन रहे हैं रात सुरमई, और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेरे सनम, आवाज है आशा भोसले की।

और ये वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे 3 बजे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो फिर मिलने के वादे के साथ जयति चाहे की अनुमति आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत और फिर मिलने के वादे के साथ। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।

0: बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने दो विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया है। सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र विधान परिषद की सभी 17 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने कांग्रेस को 8 सीटें, शिवसेना यूबीटी को 6 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार को 3 सीटें आवंटित की हैं। राज्य विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल संपन्न हुई। मतदान और मतगणना दोनों 22 जून को होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के एक हिस्से के ढहने की घटना की जांच के लिए दो अलग अलग उच्च स्तरीय जांच समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुंझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और अनिल डी अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें उन पर बैंक को 2,929 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष को कम करने पर सहमति बन गई है। यह समझौता इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत और मध्यस्थों के माध्यम से हिजबुल्ला से संपर्क के बाद सामने आया है। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान की चेतावनी जारी की है। इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मध्य कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और करिकल में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Min Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi yesterday. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan multimodal transit transport project. President Draupadi Murmu

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का. आप सबका एक बार प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं प्रोग्राम हमराही में. मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस प्यारे से गीत के साथ. गीत है फिल्म सच्चा झूठा से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में.

उसकी मुस्कान जैसे रात की ठंडी हवा का झोंका जो दिल की सारी थकान चुरा ले जाए और हर पल को खूबसूरत बना दे।

अभी आपने गीत सुना फिल्म लहू के दो रंग से। इंतजार भी कितना प्यारा होता है जब यकीन हो कि कोई हमें याद करके मुस्कुरा रहा होगा। हर बीतती रात फिर उम्मीद बन जाती है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है हम राही। कुछ लोग दिल में इस तरह बस जाते हैं, कुछ लोग दिल में इस तरह बस जाते हैं कि रात हो या दिन, हर ख्याल उन्हीं से शुरू होता है और उन्हीं पर आकर ठहर जाता है।

0: कभी कभी प्यार को बस दो धड़कनों की दुनिया चाहिए, कभी कभी प्यार को बस दो धड़कनों की दुनिया चाहिए होती है, जहां बातें कम और एहसास ज्यादा सुनाई दे।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना...

अभी आपने गीत सुना फिल्म बॉबी से लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज में। कुछ रिश्ते आवाज से नहीं, दिल की खामोश पुकार से जुड़ा जाया करते हैं, जैसे हमारा रिश्ता है आपसे गीतों के साथ।

रात की ठंडी हवाओं में जब किसी का ख्याल महकने लगे तो हर वादी मोहब्बत का गीत गुनगुनाने लगती है और इसी के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ मैं कार्यक्रम के आखिरी गीत के साथ। जल्द मुलाकात होगी यानी 4:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम अरुणिमा और गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो जल्द मिलते हैं, तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर और ये प्यारा सा गीत आपके लिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध

0: मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने दो विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया है। सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र विधान परिषद की सभी 17 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने कांग्रेस को 8 सीटें, शिवसेना यूबीटी को 6 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार को 3 सीटें आवंटित की हैं। राज्य विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल संपन्न हुई। मतदान और मतगणना दोनों 22 जून को होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के एक हिस्से के ढहने की घटना की जांच के लिए दो अलग अलग उच्च स्तरीय जांच समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के अधिकारी अमिताभ झुंझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल डी अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष को कम करने पर सहमति बन गई है। ये समझौता इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत और मध्यस्थों के माध्यम से हिजबुल्ला से संपर्क के बाद सामने आया है। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Min Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi yesterday. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan multi-modal transit transport project. President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's neighbourhood first Act East and Mahasagar policies. Welcoming Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan yesterday, President Murmu said both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The President said Myanmar is India's gateway to Southeast Asia as it is the only ASEAN country that shares a land border with India. Congratulating President Hlaing on assuming office as the President of Myanmar, President Murmu said that India looks forward to working closely with the new government to strengthen the bilateral partnership further. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, SEPA, has come into force.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का. मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त भारती और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस प्यारे से गीत के साथ. गीत है फिल्म राजकुमार से सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाज में.

इस गीत को संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं कार्यक्रम अरुणिमा का। फिल्म अंधा कानून से किशोर कुमार की आवाज में गीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और संगीतकार आनंद बख्शी।

और अभी आपने गीत सुना फिल्म अंधा कानून से, और इस गीत के गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गायक किशोर कुमार। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म नया दौर से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है अरुणिमा. और आगे बढ़ते हैं सुनते हैं अगला गीत फिल्म दुल्हन वही चुपिया मन भाई से हेमलता की आवाज में गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन.

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

और अब समय कह रहा है कि आप सहानुभूति ले लीजिए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगी 5:10 पर लेकर कार्यक्रम भोर सुहानी। छोड़े जा रही हूं आपको एक बहुत ही प्यारे से भजन के साथ। भजन है को अपनी आवाज से सजाया है भजन सम्राट श्री गोविंद भार्गव जी ने। आनंद लीजिए इस भजन का और जल्द मुलाकात होगी 5:10 पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में

0: पीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी सांसद और प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने पत्रकारों से बातचीत में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के प्रयासों पर हुए विचार विमर्श का ब्यौरा साझा किया। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। किसी एक स्थान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन का असर सभी मोर्चों पर पड़ेगा। इससे पहले इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ईरान समर्थित हिजबुल्ला के मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में लेबनान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान की चेतावनी जारी की है। विभाग ने इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Min Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi yesterday. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan multimodal transit transport project. President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First Act, East and Mahasagar policies. Welcoming Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan yesterday, President Murmu said both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The President said Myanmar is India's gateway to Southeast Asia as it is the only ASEAN country that shares a land border with India. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, SEPA, has come into force yesterday. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the SEPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. Addressing media in New Delhi, Mr. Goyal said that this partnership agreement is not simply a trade agreement, it is a statement of civilizational trust. The Union Minister informed that from day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% of India's export to Oman. Mr. Goyal also informed that multiple consignments are being shipped yesterday from Mumbai, Kolkata and Chennai to mark the operationalization of the agreement. India and Australia yesterday affirmed the importance of enhancing cooperation with regional partners to help maintain a free, open, peaceful, stable and prosperous Indo-Pacific. During the second edition of India-Australia Defence Ministers' Dialogue in New Delhi, both the countries

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस भजन के साथ।

ये बहती हवाएं जैसे संदेश दे रही हैं कि नई सुबह उम्मीदों का उत्सव है। आइए इस ताजगी को अपने दिल में बसाकर पूरे दिन को मुस्कान और ऊर्जा से भर दें।